0: ସଫଳତା ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବି। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ସକାଳ 6:00। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ।
1: ମୁଁ ମୁକେଶ କୁମାର ବାଲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब चिप से लेकर जहाज तक विनिर्माण के क्षेत्र में नया भविष्य तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर बड़े समुद्री जहाजों तक पूरी तरह आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा रही है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी समर्पित माल गलियारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 महत्वपूर्ण खंड भी राष्ट्र

0: को समर्पित किए।
1: 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने फिनटेक क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई से 2400 करोड़ रुपए से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत के जैसा ही है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से अधिक लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल को कल नई दिल्ली में शानदार विदाई दी गई। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया उपस्थित रहे। डॉ मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरि रंजन राव और भारतीय दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की उपस्थिति में आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ଭକ୍ତିଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦନା। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସଂସ୍କୃତ ବନ୍ଦନା। ପୁରାତନ ରଚନାରୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେଲେ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।

एक दिन अवध नरेश महाराज दशरथ दर्पण में अपनी छवि देखते हुए राजमुकुट को व्यवस्थित कर रहे थे कि कनपटी पर के बाल सफेद दिखे, मानो बुढ़ापा ये संदेश दे रहा हो कि हे राजन, ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को युवराज पद देकर अपने जन्म और जीवन को सार्थक करने का समय आ गया है। महाराज ने अपनी अभिलाषा कुलगुरु वशिष्ठ मुनि को जा सुनाई। उनकी मंगल कामना तथा आनंददायी वाणी सुनकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए। बोले, हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र ही इस मंगल कार्य के लिए आवश्यक प्रबंध कीजिए। श्री राम के अभिषेक के लिए शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। ये संवाद सुनकर मंत्री सुमंत्र तथा राजप्रासाद के सेवकगण ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे को जल मिल गया हो। महाराज का आदेश पाकर मुनिवर वशिष्ठ द्वारा बताई गई सामग्री का प्रबंध किया गया। सभी तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल फूल, चंवर, मृगछाला, नाना प्रकार के वस्त्र, मणियां तथा अन्य वस्तुओं की व्यवस्था की जाने लगी।

0: का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेन देन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीकी नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। प्रधानमंत्री ने भारत की प्रमुख डिजिटल भुगतान प्रणाली के वैश्विक विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि यूपीआई अब 11 देशों में उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है।
1: डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है।
0: श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है और भारत इस दौर में भी 7.8% की दर से विकास करता है तो विश्व को एक नया भरोसा मिलता है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
0: प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान प्रणालियों को एकीकृत करने से लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वो दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्री राजनाथ सिंह ने भारत के तीव्र आर्थिक परिवर्तन का जिक्र करते हुए कहा कि देश विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: आज भारत दुनिया के ग्रोथ में 16% से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। पिछले 10-12 सालों में अब हमारी इकोनॉमी की साइज 2 गुनी हो गई है और आज सारी दुनिया इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर जब चैलेंजेज का सामना कर रही है उस समय भारत की जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 7.8% है।
0: श्री सिंह रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बंदरनायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्रीलंका के उपरक्षा मंत्री सेवानिवृत्त मेजर जनरल अरुणा जयसेकरा ने रक्षा मंत्री का स्वागत किया। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हो गए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव असीम महाजन और कुवैत के विदेश मंत्रालय में एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री नवाफ अब्दुल लतीफ सुलेमान अल अहमद ने बैठक की सह अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इन क्षेत्रों में राजनीतिक संबंध, व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंध शामिल है। दोनों पक्षों ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग के तहत संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष नई दिल्ली में आपसी सहमति वाली तारीख पर विदेश कार्यालय परामर्श का अगला दौर आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच लंबे समय से संबंध रहे हैं जिन्हें दिसंबर 2024 में रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि कुवैत में रहने वाले 10.5 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये हमले पिछले 2 दिनों में अमरीकी पोत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने के ईरान के 2 प्रयासों के जवाब में किए गए। ओमान की खाड़ी में नष्ट किए गए ईरानी जहाजों में केवेक, चारमीनार, होराइजन 1 और रिस्को शामिल थे। कनाडा ने अमेरिका की 600 से ज्यादा चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर ये शुल्क आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गए। एक रिपोर्ट।
4: कनाडा के वाणिज्यिक उद्यम फेडरल सरकार के नए लागू किए गए डॉलर के बदले डॉलर शुल्क के तहत काम कर रहे हैं, जिसमें लगभग 28 अरब डॉलर मूल्य का अमरीकी आयात शामिल है। अमरीका के 600 से अधिक उत्पादों पर 15-50% तक शुल्क लगाया गया है। प्रभावित सामानों में स्टील और एल्यूमिनियम जैसे औद्योगिक सामान, टॉयलेट पेपर जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें और कॉइन ऑपरेटेड आर्केड मशीन जैसे विशेष उत्पाद शामिल है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे सरकार के मुख्य खरीद कैटलॉग के जरिए कनाडाई उत्पादों की खरीद तब तक रोक दे जब तक कनाडा अमेरिकी कारोबारियों और किसानों को अपने बाजार में सामान की पहुंच नहीं देता। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: छत्तीसगढ़ में कांकेर अदालत ने 2015 में सुरक्षा बलों पर हमले से जुड़े मामले में 5 माओवादियों को सजा सुनाई है। इनमें कट्टर नक्सली प्रभाकर और उसकी पत्नी राजे कांगे भी शामिल हैं। दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी के कैडर प्रभाकर और डिवीजनल कमेटी सदस्य उसकी पत्नी राजे कांगे को 7-7 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई। इस मामले में शामिल 3 अन्य माओवादियों को 5-5 वर्ष की जेल की सजा दी गई। वर्ष 2015 में माओवादियों के एक समूह ने सुरक्षा बलों की उस टीम पर हमला किया था जो कोरार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज गोवा में पोरवोरिम एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर बना ये 6 लेन का कॉरिडोर 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और इसे करीब 641 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। कॉरिडोर 11 सितंबर से वाहनों के लिए खोल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: इस कॉरिडोर से रोज करीब 75-80 हजार वाहनों के गुजरने की उम्मीद है। इसे नीचे की मौजूदा सड़क पर करीब 60% ट्रैफिक कम होने की उम्मीद है। इसे मापुसा पणजी के व्यस्त रास्ते पर ट्रैफिक कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटकों और व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी।
6: इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही, पोषण एवं प्रारंभिक

0: बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता दी जाएगी। वाराणसी में होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम में पोषण मेले का आयोजन होगा। लाभार्थियों के अनुभव पर आधारित वीडियो का प्रदर्शन होगा। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के बीच संवाद इसका प्रमुख आकर्षण होंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद रहेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए राज्य के हिस्से में 4,000 रूपये प्रतिमाह और सहायिकाओं के लिए राज्य के हिस्से में 2,000 रूपये प्रतिमाह की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा होने का अनुमान है। मौसम के मॉडलों ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके कारण सितंबर के उत्तरार्ध में देश के कई भागों में बौछारें पड़ सकती हैं और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज तेज वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी तेज हवा के साथ गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। खेलों में यूएस ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स की मौजूदा चैंपियन और शीर्ष वरीयता प्राप्त अरीना सबालेंका तथा पुरुष सिंगल्स में फ्रांसिस टियाफो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अरीना सबालेंका ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में चेंगड़ राज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहे। @AIRNewsHindi और Instagram पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। वडोदरा में माल ढुलाई गलियारे के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी पार्टियां अब नए नए मुद्दे उठाएंगी। ब्रिक्स घोषणा पर सहमति बड़ी चुनौती, यूएई, ईरान आमने सामने, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, आर्थिक और वित्तीय मामलों पर भी जोर, कृषि, बीज और ऊर्जा पर साझेदारी को लेकर विशेष बातचीत होने की संभावना। देश भर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर, अमर उजाला की खबर है। हिंदुस्तान ने श्रीनगर की शांत डल झील पर 4 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के आगाज होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, कश्मीर की डल झील पर शिकारी, ठहरी शाम और सिनेमा का जादू।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की फिनटेक सफलता की कहानी में निर्विवाद रूप से यूपीआई का महत्वपूर्ण योगदान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सेतु बताया। अमेरिका ने अपने युद्धपोत पर हमले के बाद फारस की खाड़ी में ईरान के 5 तेल टैंकर नष्ट किए। कनाडा ने 600 से अधिक अमरीकी वस्तुओं पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया। और टेनिस में अरीना सबालेंका और फ्रांसिस टियाफो यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says UPI is undisputed champion of India's fintech success story. Defence Minister Rajnath Singh describes Indian community in Sri Lanka as important bridge between the two countries. US says it destroyed 5 Iranian oil tankers in Persian Gulf after attacks on American warship. Canada imposes retaliatory tariffs of up to 50% on more than 600 US goods. Rain likely to lash large parts of central, south, east and west India between September 12 and 21 before southwest monsoon begins its seasonal retreat. And in tennis, Aryna Sabalenka and Francis Tiafoe enter semifinals of US Open in New York. And now the news in detail. Praising the remarkable achievement of India's rise in

तेरा सुरूर ए चलचित्र पाई कंठदान करछन्ते शिल्पी दर्शन रावल एवं अदिति सिंह शर्मा। गीत समीर अंजान। संगीत हिमेश रेशमिया।

0: 9449408097 नंबर रे।
1: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केंद्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: ସପ୍ତଧାରା କ୍ରମରେ ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ଶୁଣିପାରିବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के फिनटेक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की है। उन्होंने कहा कि फिनटेक की सफलता की कहानी में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई का निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण योगदान है। श्री मोदी ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।
2: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि केवल अगस्त महीने में यूपीआई के माध्यम से 24 अरब से अधिक लेनदेन हुए। श्री मोदी ने कहा कि इसी प्रभाव के कारण फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा था कि यूपीआई केवल तकनीक नहीं बल्कि सभ्यतागत कहानी है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान के लिए अगले रणनीतिक चरण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए यूपीआई को साझेदार देशों की घरेलू भुगतान प्रणालियों के साथ तत्काल एकीकृत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को स्वदेश में अपने परिवारों को धन भेजने में काफी तेजी आएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच सेतु बताया है। उन्होंने कहा कि वे दोनों राष्ट्रों के बीच मित्रता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री सिंह कल श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर कोलंबो पहुंचे। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत में कहा कि भारत संकट के समय में हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। भारत और कुवैत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत हुए हैं। कुवैत में कल 8वीं भारत कुवैत विदेश कार्यालय परामर्श बैठक में ये सहमति बनी। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार हमलों के कारण पश्चिम एशिया में तनाव तेजी से बढ़ गया है। इससे व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान के कच्चे तेल के 5 टैंकर नष्ट कर दिए हैं। अमेरिका के अनुसार पिछले 2 दिनों में उनके एक युद्धपोत पर ईरान ने हमले किए थे। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। उधर कनाडा ने अमरीका की 600 से अधिक चीजों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाया है। इससे इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार विवाद बढ़ गया है। अमरीकी सामान पर यह शुल्क आधे

0: आधिकारिक रूप से कल रात से लागू हो गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय आज वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह की थीम हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी रखी गई है। पोषण माह 2026 में आहार विविधता और पर्याप्त प्रोटीन, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा गर्म पका हुआ भोजन, सामुदायिक स्वामित्व और जवाबदेही, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास के लिए शिक्षा तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के 10 वर्ष पूरे होने को प्रमुखता से दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भारतेंदु ने भाव, भाषा और शैली में नवीनता का समावेश कर हिंदी को आधुनिक स्वरूप दिया। इसके अलावा श्री शाह ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर भी आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि करगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा ने न केवल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया, बल्कि अपने उत्कृष्ट नेतृत्व और वीरता के जरिए सहयोगी सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी शुरू होने से पहले 12 से 21 सितंबर के बीच केंद्रीय, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के बड़े भाग में वर्षा का अनुमान है। मौसम के मॉडलों के ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में होने जा रही वर्षा कमजोर पड़ते मानसून चक्र को अस्थायी रूप से पुनर्जीवित कर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले कलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर कार्यक्रम आम केन्द्र प्रसारित हेउछे मीडियम वेब्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलो हर्ट जगे एवं एफएम्रे 103.6 मेगा हर्ट जगे। प्रसार भारती लाइव स्ट्रीमिंग आप माध्यम रे मध्य आपण आम केन्द्र कार्यक्रम सुनी पारुछंती। आरंभ करुछु हिंदी चलचित्र गीत। प्रथम गीतटि शुणन्तु कबीर सिंह चलचित्ररु, शिल्पी अरिजित सिंह, गीत रचना इरशाद कामिल, संगीत निर्देशना सचेत एवं परंपरा।

0: आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन पाई जोगाजोग करंतु मोबाइल नंबर हला
1: 8280306927 किंबा 9449408097 नंबर रे
0: सहज एवं सरल उपाय रे अल्प टंका रे आपण आकाशवाणी जयपुर केन्द्र रे विज्ञापन दियंतु।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और जोहार। आज के उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। सुनते हैं आज का एक सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर जी ने। लिखते हैं, जीवन में वही आगे बढ़ता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। अक्सर ठोकरें रास्ते की रुकावट नहीं बल्कि मंजिल की तैयारी का प्रशिक्षण होती हैं। धन्यवाद आप दोनों का इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। गांव ठाणी कुतुबपुर।

जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत ने लिखा है। आदरणीय विमलेश जी एवं अजीत जी, सादर नमस्कार। 13 अगस्त 2026 को 1857 के गुमनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों की श्रृंखला के अंतर्गत वीर सावरकर जी के जीवन को जानने का अवसर मिला। आपकी ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।

की ये प्रेरणादायी प्रस्तुति हमें स्वतंत्रता के मूल्य और हमारे वीरों के त्याग एवं बलिदान से परिचित कराती है। इतिहास के ऐसे प्रेरणादायी प्रसंगों को जन जन तक पहुँचाने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद और साधुवाद। आपको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। ग्राम पजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, आज हमने उमंग कार्यक्रम के अंतर्गत ये भी जानिए मैं पिंगली वेंकैया जी के बारे में, अपने राष्ट्रध्वज के बारे में और आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के बारे में बहुत कुछ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी। आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत सारे प्रेरक प्रसंगों को। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जिसने न कोई बड़ी मशीन इस्तेमाल की, न उसके पास कोई बड़ी टीम थी। उसके पास था एक हथौड़ा, एक छेनी और एक अद्भुत संकल्प। आज के प्रेरक प्रसंग का शीर्षक होगा पहाड़ से भी ऊंचा आदमी। ये कहानी भी एनसीईआरटी की हिंदी की कक्षा 8 की पूर्व पाठ्य पुस्तक वसंत से संदर्भित है। ये कहानी है दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी की। श्रोताओ, ये कहानी शायद आपने भी सुनी होगी, लेकिन हम इसे आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करेंगे। उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के गहलोर गांव से। श्रोता मित्रों, ये वो समय था जब आज के युग के उन्नत यातायात, संचार और चिकित्सा के साधन नहीं थे। उन दिनों में गहलोर गांव के लोगों को अस्पताल और बाजार तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ के चारों ओर घूमकर जाना पड़ता था। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था। कहा जा सकता है कि पहाड़ मात्र एक प्राकृतिक बाधा ही नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के जीवन में रोज की परेशानी भी था। दशरथ मांझी मजदूरी करते थे। एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ के दूसरे छोर पर काम कर रहे अपने पति दशरथ मांझी के लिए खाना लेकर जा रही थीं। पहाड़ पार करते समय वे दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। चोट गंभीर थी, उन्हें समय पर चिकित्सा सहायता नहीं मिल सकी और उनकी मृत्यु हो गई। सचमुच बहुत दुखद घटना थी, लेकिन उस दुख ने दशरथ मांझी के भीतर एक ऐसा संकल्प पैदा किया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने फैसला किया, मैं इस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा। और ये फैसला उन्होंने अकेले ही किया। उनके पास था एक साधारण हथौड़ा और छेनी। दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने पहाड़ पर प्रहार करना शुरू किया। एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक साल, समय बीतता गया। हो नहीं सकता मित्रों कि गांव वालों ने उनका मजाक नहीं उड़ाया होगा, लेकिन उन्होंने लोगों की बातों की चिंता नहीं की। वे रोज काम करते रहे। दशरथ मांझी जानते थे कि उन्हें एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटना है, उन्हें बस हर दिन थोड़ा सा काम करना है। और श्रोता मित्रों, यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई बार बड़े लक्ष्य को देखकर डर जाते हैं। हम सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा, लेकिन दशरथ मांझी ने सुनिश्चित कर लिया था कि वे अपने काम में निरंतरता बनाए रखेंगे। उन्होंने हथौड़ा उठाया और पहाड़ पर एक चोट की, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर हजारों चोटें, लाखों चोटें, और धीरे धीरे वो पहाड़ टूटने लगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि लगभग 22 वर्षों तक वे लगातार काम करते रहे। जी हाँ श्रोताओं, पूरे 22 साल। और उन्होंने अंततः पहाड़ के बीच से लगभग 110 मीटर लंबा और लगभग 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। और जिस रास्ते के लिए लोगों को बहुत दूर घूमकर जाना पड़ता था, वो दूरी काफी कम हो गई थी। मुझे लगता है मित्रों कि आज की उमंग कार्यक्रम का यही संदेश है, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए। हम सबके जीवन में कोई न कोई पहाड़ होता है, कोई न कोई कठिनाई अवश्य होती है, सीखने में, समझने में। और कई बार हम उस पहाड़ को देखकर सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, लेकिन दशरथ मांझी की कहानी बताती है एक दिन में पहाड़ नहीं टूटता, लेकिन रोज की एक चोट उसे धीरे धीरे बदल सकती है। यानी सफलता का रहस्य केवल शक्ति ही नहीं, दृढ़ संकल्प के साथ निरंतरता भी है। श्रोताओ, कई बार हमारी छोटी छोटी कोशिशें हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यदि निरंतरता बनी रहे तो हम वर्षों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमने बहुत लंबी यात्रा तय कर ली।

तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का प्रेरक प्रसंग। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा। आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताजा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी CIT NCERT को लगातार फॉलो करते रहें। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल YouTube को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। पहला कार्यक्रम है कम बैक सून। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित है, जिसमें गीत के द्वारा यातायात के कुछ साधनों के बारे में जानकारी दी गई है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: उस रात ऑफिस से निकलने में तुबा हो गई थी, आंखें भी भारी हो रही थी, पर सोचा 15 किलोमीटर ही तो

0: निकल जाता हूँ। हाईवे पर एक ट्रक के पीछे चला गया। ट्रक के पीछे एक आयरन रॉड लगी थी, टेल लाइट दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि वो सीधा जा रहा है, पर जैसे ही उसने ब्रेक मारे
1: मुझे समझने में एक सेकंड ज्यादा लग गया। नींद में गाड़ी चलाना और पीछे की रोशनी ना दिखता, दोनों ही गंभीर हादसे को बुलावा देना है।
2: थकान या नींद की अवस्था में वाहन चलाने से बचें। यात्रा के दौरान यदि थकान या नींद महसूस हो तो आगे बढ़ने के बजाय थोड़ी देर रुककर आराम करना सुरक्षित होता है।
3: और अब सुनते हैं कार्यक्रम रेलगाड़ी। इस कार्यक्रम में बच्चों को रेलगाड़ी, रेलवे स्टेशन और इससे जुड़ी कई बातों को बड़े ही मनोरंजक ढंग से बताया गया है। गीतों और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग करके कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाया गया है।
4: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है रेलगाड़ी का खेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे संजू वो देखो, राजू तो पीछे छूट गया।
7: अरे हाँ, गाड़ी रुको।
6: आ जाओ संजू, अब मुझे पकड़ लो, छूटना मत।
7: हाँ, अब बन गई रेल।
5: रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली।
6: अरे अरे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए।
7: दादाजी आप भी हमारे संग खेलिए ना।
8: अच्छा भाई, पर मैं तो तुम सबसे बड़ा हूँ और भारी भी, तो ऐसा करते हैं तब मैं इंजन बन जाता हूँ।
6: हाँ, हाँ दादाजी ये ठीक रहेगा।
8: चलो
5: रेल चली भाई रेल चली,
8: एक के पीछे एक आओ, रेल बनाओ रेल बनाओ। इंजन आगे डिब्बे पीछे, लोहे की पटरी पर खींचे, गांव गांव और शहर शहर में धूल उड़ाती रेल चली भाई रेल चली, छुक छुक करती रेल चली, छुक छुक करती रेल चली। अरे भाई मैं तो थक गया, अब रेल गाड़ी रोकनी पड़ेगी।
6: हाँ दादाजी, हम भी थक गए।
8: अच्छा तो फिर आओ यहाँ बैठते हैं, हैं?
6: अच्छा
8: अब ये बताओ, तुम में से किसने सचमुच की रेलगाड़ी देखी है?
7: दादाजी मैंने देखी है।
8: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
7: जब माँ के साथ नाना जी को लाने स्टेशन गया था तभी देखी है बस।
8: अच्छा तो चलो, मैं आज तुम लोगों को सचमुच की रेलगाड़ी दिखाऊंगा।
6: अरे वाह,
8: यही पास में तो है रेलवे स्टेशन।
6: हाँ, आज तो बड़ा मजा आ जाएगा, हम लोग रेलगाड़ी देखेंगे।

0: चलो जल्दी चले। हाँ
1: अरे ओ रामू भैया, कहाँ जा रहे हो?
2: अरे दादाजी, स्टेशन जा रहा हूँ सवारी लेने को।
1: अरे भैया, तब तो हमारे बच्चों को भी साथ लेते चलो, रेलगाड़ी देखाएंगे।
2: अरे हाँ हाँ दादाजी, आओ आओ बच्चों, आ जाओ बैलगाड़ी में।
1: बैठो बैठो, जल्दी खड़े हो, बैठो बैठो बैठो। चलो चलो चलो, उतरो बच्चों, जल्दी करो, गाड़ी आने ही वाली है।
2: उतरो उतरो।
0: रानी जल्दी चलो, नहीं तो गाड़ी चली जाएगी।
1: हाँ हाँ उतरो बेटी।
3: बच्चों, रेलवे स्टेशन पहुंचकर दादाजी और बच्चों ने सबसे पहले खरीदे प्लेटफॉर्म टिकट और फिर झटपट पहुंचे स्टेशन के अंदर।
4: दादाजी, यहाँ तो बड़े सारे लोग हैं।
1: हाँ बच्चों, कुछ लोग तो रेलगाड़ी में चढ़कर आने वाले हैं और अच्छा, कुछ जाने वाले हैं।
4: अच्छा तो ये बात है।
1: अच्छा बच्चों, वो देखो, वो है लोहे की पटरी, इसी पर रेलगाड़ी छुक छुक करके चलती है। बच्चों जल्दी जल्दी पीछे आ जाओ।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिलासपुर से रामपुर को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
4: हो हो हो, रेलगाड़ी आ गई, रेलगाड़ी आ गई।
0: अरे वाह दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
1: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
4: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
1: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
0: अच्छा।
4: अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
1: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
4: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
6: छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक रेलगाड़ी आती है, छुक छुक छुक छुक छुक।

0: अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अब आपकी मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: प्रचार कलो एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रसारित हेउछि मीडियम वेब्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ट्ज जगे एवं एफएमरे 103.6 मेगाहर्ट्ज जगे प्रसार भारती लाइव स्ट्रीमिंग आप माध्यमरे मध्य आपण आम केन्द्रर कार्यक्रम शुणिपारुछन्ति। आरंभ करुछु नाटक पराजिता नायिका, रचना सुकामिनी नंद, प्रयोजना कुंजबिहारी नंद, सहयोगिता अशोक मिश्र, सुहास महांती, विनोद दास एवं तोफान नाहक। तेबे आसंतु सुनिबा नाटक पराजिता नायिका।
3: हेलो शिखा, तुम आसवर एत डेरी जे सेपटे कन्फ्यूज रूम में समस्त अपेक्षा कर तुम्हें जानी ना कौन कॉलेज एनुअल ड्रामा हम पा से पार्ट सिलेक्शन हम तुम्हें हिरोइन आम सांग हिरो प्रतिजोगिता
4: बाह खूब तो इंटरेस्टिंग। अच्छा चलो तेज
5: यही तो शिखा तुम्हें आसीगल खूब भल है आम तुम अपेक्षार तुम्हें तो जान कॉलेज एनुअल फंक्शन रे गोटा इंग्लिश ड्रामा स्टेज करने स्थिर करुमर इंग्रजी कहवा शैली खूब चमत्कार से तुमको हिरोइन करने ठीक कर
3: थैंक यू सर। तबे मु जानी पारे कि मुझे हिरोइन हुए ताले हीरो किए
5: हीरो आम कॉलेज ब्रिलियंट स्टूडेंट दुष्मंत महापात्र
3: सर मत क्षमा करे शिखा सामंतराय सहित अभिनय करने को स्मार्ट चेहरा दरकार भद्र लोक देखने जना पड़ी सीधा जंगल रु चली आसंती ये फेर हिरो हे
5: मिस सामंतराय ये कौन तुम कौच
3: सर मुझे ठीक कह भद्र लोक जदि हिरो हम स्टूडेंट मैंने तो ड्रामा देखे सर
5: मिस सामंतराय तुम्हें संजय ठीक कथबार्ता कर निजक तुम कौन बोली मन कर दुष्मंत भली ज्वेल ये कॉलेज आउ किए अच्छी तुम्हें ता सहित अभिनय किंतु अपमान करिवार कि अधिकार अच्छे तुमर देखु देखु किपरी तुम कथार प्रत्युत्तर नदे नीरवर चलीगला
3: ता छड़ा तार अन्य उपाय नथिला सर आपण कहउचंती से खूब भद्र बोली ताकर परिचय मु खूब आगरु पाइचे धनी मानकु ताकर भयंकर घृणा सेतिपय डिबेटिंग रे कॉलेज मैगजीन रे पुंजीवाद को ताकर भयंकर आक्रमण
5: किंतु तार माने नहि जे व्यक्तिगत भाव से तुमको घृणा करे
3: बाय ऑल मींस बड़ लोक मान को भयंकर घृणा मुझे बुझी पार नहीं सर निजे गरीब बोली धनी लोक मान प्रति एत जेलस हमार कारण कौन
5: मिस सामंतराय मु तुम सहित तो जुक्त करने को चाहूनी किंतु दुष्मंत भली भद्र पिला को कहीं अपमान करू एक सही पारे ऑल राइट मुझे
3: कथा भल कल शिखा बीच में किए अपमानित है सते तोर देखु खूब दरद ए जंगलीटाई

0: हेलो, किए कहो जंदी?
1: मैं प्रोफेसर छोटराय कहूँ।
0: प्रोफेसर छोटराय, आपन तो सब कथा जानती। आपन ए मुहूर्त रे से पिला को ए कॉलेज रु कंपलसरी टीसी दे विदा कर दियंतु। से भली पिला ए कॉलेज रे पढिबा पई अयोग्य। एटा कॉलेज कमिटी रा प्रेसिडेंट कर आदेश बोली धरि नियंतु। बुझिले? थैंक यू।
2: दुष्पंत ए अन्न या के बेही परना प्रिंसिपल तंगर डिसन उड्र करंतु नचे धर्मघट
3: थाउ समर।

0: आधार कार्ड गाम तो जी तमालेन कनी
1: आधार कार्ड
0: चाव कनी
1: के सर्टिफिकेट रेसिडेंट एनंग जान के सर्टिफिकेट साइबी नेती
0: रोकुन अमंग जाके रेशन कार्ड रेशन कार्ड
1: ओ बर्थ सर्टिफिकेट सब बिग साइट जी नमा आज गोलो दासन अलन तो
0: अंगन बाड़ी सेलिन अपांग लवे जालेन देन कनी मेडिकल सेलिन सर्टिफिकेट
1: ओ
0: कता को तारीख अपांग लवे से कतिन जासन आइसाई
1: हां कता का बर्थ

0: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ସମୟ ଦିନ ଗୋଟାଏ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୋଡା। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। ये अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करेंगे। प्रधानमंत्री ने 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इन वर्षों में जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र के साथ सेवा की यात्रा को लगातार आगे बढ़ाया है।
2: जो आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास रहा है, एक बहुत बड़ा योगदान नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने दिया है। उनका सफर एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में जो प्रारंभ हुआ और आज देश के प्रधान सेवक के रूप में जो उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, ये केवल उनके स्पष्ट विजन, उनके दृढ़ संकल्प, सामाजिक जीवन में लगातार गुणात्मक कैसे परिवर्तन आए, कैसे उनके जीवन में बदलाव आए, इसका प्रयास उन्होंने किया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और श्रीलंका के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने दोनों देशों के विकास और लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए भी मिलकर काम करते रहेंगे। भारत ने सऊदी अरब में हाउसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमलों से बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के काठमांडू में भारतीय फोरेंसिक टीम ने अपने काम में महत्वपूर्ण प्रगति की है। टीम अब तक 1400 से अधिक डीएनए नमूनों की जांच कर चुकी है और 378 डीएनए प्रोफाइल तैयार किए हैं। इस बीच भारत के संयुक्त तकनीकी टीम ने आज चिले में स्थित सुरंग में जल निकासी और कीचड़ हटाने का काम जारी रखा। इस्माइली समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम आज से 15 सितंबर तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। वे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर भारत आए हैं। प्रिंस रहीम का कल उपराष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम है। वे नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी ने आज बंबई उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की। इस वर्ष का विषय है हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 27वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमरीका के बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। वहीं अमरीका की जेसिका पेगुला ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। मौसम विभाग ने कल बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले दो दिनों तक उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आंधी तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी रहेगी। आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम

0: माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रु। श्रोतामाने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी जयपुर केन्द्ररु। कार्यक्रम आम केन्द्ररु प्रसारित होचे मीडियम वेभ्रे 204.5 मीटर तथा 1467 किलोहर्ज जोगे एवं एफएम जोगे कार्यक्रम शुणिपारुछन्ते 103.6 मेगाहर्ज जोगे। आपण मोबाइल फोन न्यूज अन् एआईआर आप जोगे मध्य आम आकाशवाणी जयपुर केन्द्रर समस्त कार्यक्रम शुणिपारुछन्ते। प्रचार करुछु हिंदी सुगम संगीत। प्रथमे शिल्पी हेले राहुल मिश्र एवं आकांक्षा शर्मा। गीत रचना एवं संगीत परिचालना राहुल मिश्रा।

0: सह निकटतम पड़ोशी और सामुद्रिक अंशीदार भाव मिलमिशी कार्य जारी रखे सहमत होते सामाजिक गणमाध्यम पोस्टर श्री सिंह कहते यही अंचल सुरक्षा शांति और समृद्धि को सुनिश्चित करने उभय देश प्रतिश्रतिबद्ध उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन निमंत्रण क्रमे सिया इस्माइल संप्रदायर 50तम इमाम प्रिंस रहीम आगा खां पंचम आज सातदिनिया भारत गस्त इमाम भाव दायित्व ग्रहण करने प्रथम भारत गस्त से आसंता उपराष्ट्रपति आलोचना करे नी रहणी समय आगा खां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह और वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉ एस जयशंकर साक्षात करार कार्यसूची रही वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्ष गस्तर अंशस्वरूप से अहमदाबाद मुंबई और हैदराबाद गस्त करे जोठारे आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क विभिन्न विकासमूलक कार्य जड़ित अछि साउदी आरबर सार्वभौम क्षेत्र उपर विशेषकर साधारण नागरिक और अर्थनैतिक प्रतिष्ठानगुड़ी लक्ष्य कर हुती आक्रमण को भारत निंदा कर साउदी आरब आक्रमण संपर्क में गणमाध्यम एक प्रश्नर उत्तर दे वैदेशिक व्यापार मंत्रालय मुखपात्र रणधीर जयसवाल कहते हुतीर यह आक्रमण आंचलिक सुरक्षा और स्थिरता को नष्ट कर एथसहित बाब अल मांडेब जलपथर नौचाला स्वाभाविक करिवारे आक्रमण प्रतिबद्ध सृष्टि करुथबारु आदौ ग्रहणीय न बोली से जयसवाल कहिछन्ति नेपाल बन्यारे मृत्यु संख्या 1365 रे पहुंचिछि उद्धारकारी दल अद्यावधि निखोज थिबा अतिकमरे 599 जन विदेशी नागरिकों समेत 5326 जन लोकों को खोजिबारे जारी रखिछन्ति नेपाल सरकार अनुजाई प्रभावित अंचल अधिक मृतदेह उद्धार वर्तमान सुधा चिन्हट प्रक्रिया शेष होगापर 102 मृतदेह से परिवार सदस्य को हस्तांतर कर चिन्हट को सहज करने डीएनए नमूना संग्रह सहित समस्त नियम अनुजाई सुरक्षाकर्मी 1147 अचिन्ना मृतदेह को सुरक्षित भाव रखिंट अन्यपक्ष चीन गणमाध्यम रिपोर्ट अनुजाई विपर्यर चीन पार्श्व में 43 जन मृत्यु घटा बेले तिब्बत 500 अधिक निखोज जातिसंघर महासचिव आंटोनियो गुटरेस कहते सांप्रतिक कूटनैतिक प्रयास युक्रेन और रूस शांति आलोचना पुनर्बार आरंभ करिवारे सहायक हो आमेरिकार वरिष्ठ प्रतिनिधि मस्को एवं कीव को गस्त परिप्रेक्षी श्री गुटरेस मंतव्य देते एक प्रेस विवृत्ति में मुखपात्र स्टीफेन दुजारिकी पदक्षेप युक्रेन रूस मध्य आलोचना पूर्ण एवं निशर्त अस्त्रविरति पथ उन्मुक्त कर जातिसंघ ए दिगरे सहयोग करने को प्रस्तुत अछि जवाहर नवोदय विद्यालयगुड़िक 27तम जातीय युव संसद प्रतियोगिता 2025-26 पुरस्कार वितरण उत्सव आसंताकाल नुआदिल्लीर संसद भवन परिसर में अनुष्ठित संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू एक उत्सव में अध्यक्षता करेंगे प्रतियोगिता रे कृतित्व हासिल करथिबा छात्र छात्री और विद्यालयगुड़िक सेमानकर उल्लेखनीय प्रदर्शन पर पुरस्कृत करा संसदीय व्यापार मंत्रालय विगत 30 वर्ष धरी जवाहर नवोदय विद्यालयगुड़िक युव संसद प्रतियोगिता आयोजन करी समग्र देशर नवोदय विद्यालय समितर 8 अंचल 100 विद्यालय मध्य 2025-26 वर्ष प्रतियोगिता आयोजित होता भारतीय पानीपाग विभाग आसंताकाली पर्यंत बिहार झारखंड ओडिशा पश्चिमबंग और उत्तर पूर्व भारत किसी अंचल प्रबल वर्षा होवार अनुमान करिछि आसंता दुई दिन मध्य उत्तराखंड आंध्रप्रदेश तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल और आंडामन निकोबर द्वीपपुंज में वज्रपात और घड़घड़ी सह वर्षा होवार संभावना रही एथसहित आज उपकूलवर्ती आंध्रप्रदेश केरलम और माहेरे गरम और गुड़गुड़ भली स्थिति जारी रही पानीपाग विभाग पूर्वानुमान कर देशव्यापी नवम जातीय पोषण मासर शुभारंभ संतुलित पोषण एक सुस्थ समृद्ध भारत दृढ़ भित्तिमि बोली कहिले महिला और शिशु विकास मंत्री मुंबई ठारे आज आरंभ है दुईदिनिया ब्रिक्स अर्थमंत्री और केन्द्रीय बैंक गवर्णर बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जन्मदिन अवसर में आसंता 17 तारीख एक मास सेवा संकल्प अभियान आरंभ कर बीजेपी कोलंबो ठारे श्रीलंका राष्ट्रपति आलोचना कले प्रतिरक्षा मंत्री एवं ओडिशा समेत देशर केतक अंचल आसंता काली पर्यंत प्रबल वर्षा होगा नहीं अनुमान करिछि पानीपाग विभाग संवाद शेष होला
1: This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the Midday News.

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: नमस्कार आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती आशुतोष पति मुख्य संवाद ओडिशारे पुंजि निवेश पाई संयुक्त आरब एमिरेट्स गस्तर द्वितीय दिन में आज मुख्यमंत्री निवेशक और व्यवसाय गोष्ठी करिबे आलोचना राज्य में स्क्रब टाइफस रोगर चिकित्सा और नियंत्रण पर मार्गदर्शिका प्रस्तुत करिछंती सरकार सुषम पौष्टिक खाद्यर गुरुत्व संपर्क में सचेतनता सृष्टि उद्देश्य आज आरंभ है राष्ट्रीय पोषण मास एवं आसंता 24 घंटा मध्य 9 जिले में बिजुली घड़घड़ी वर्षा नहीं पाणीपाग केन्द्र सूचना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संयुक्त आरब एमिरेट्स यूए गस्तर जाइछंती आज गस्तर द्वितीय दिन में मुख्यमंत्री श्री माझी राज्य में पुंजनिवेश शिल्प प्रतिष्ठा पर एमिरेट्स प्रमुख व्यावसायिक अनुष्ठान निवेशक एवं व्यवसाय गोष्ठी सीधासलख आलोचना करेंगे एमिरेट्स सहयोगे ओडिशा प्रजुक्ति विद्या वाणिज्य शिल्प प्रतिष्ठा क्षेत्र में नूतन सुजोग सन्धान करने नहीं आज आबुधाबी तीनदिनिया कार्यक्रम आयोजन शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई कहते मुख्यमंत्री को गस्त ओडिशा को विश्व निवेश मानचित्र अधिक शक्तिशाली कर राज्यर शिल्प आर्थिक विकास को एक नूतन गति प्रदान कर
2: विश्वर निवेश मानचित्रे अधिक शक्तिशाली करिवा यूएई रो कैपिटल ओडिशा रो टैलेंट और रिसोर्सेस द्वय समन्वय हेले ओडिशा को विकास क्षेत्र रे एक नुआ गति दबो युवपीढ़ी मानक पई अधिक रोजगार सृष्टि करिवार ये भी एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिवो केते अधिकरु अधिक एफडीआई ओडिशा को आसिबो बा विदेश पूंजी आसिबो ए इन्वेस्टर मीट सेथिरे सहायक हबो
1: मुख्यमंत्री सह शिल्पमंत्री संपत चंद्र स्वाई मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग शिल्प विभाग अतिरिक्त सचिव हेमंत शर्मा समेत राज्य सरकार उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित अच्छा मुख्यमंत्री गस्त ओडिशा यूएई निवेशक संयोजक अभियान एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप यूएई में निवेशक संयोग अभियान मध्यम ओडिशा और यूएई मध्य शिल्प और व्यावसायिक सहभागिता आहरी सुदृढ़ हो राज्य में स्क्रब टाइफस चिन्हट को नहीं स्वास्थ्य विभाग पक्ष तत्परता प्रकाश पाई जो स्थान में स्क्रब टाइफस चिन्हट कर डाक्तर पठा रोगर चिकित्सा और नियंत्रण पर मार्गदर्शिका प्रस्तुत करपरी अन्य अंचल को न व्यापे से पदक्षेप निया स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग
3: स्क्रब टाइफस स्पेशल गाइडलाइन है ये उपरे ओडिशावासी पैनिक हेबार नहीं आमर विभाग तरफ संपूर्ण नजर रखा जाए।

0: छलिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी कमर जलालाबादी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था

0: उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गटले,
0: जो संगीत की साधना में बीता।

सारंगा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। शब्दकार थे भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। रचना है राजा मेहदी अली खां की, संगीतकार मदन मोहन। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: Haley. सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और मंदाकिनी जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको भी मंदाकिनी जोशी का बहुत बहुत प्यार और नमस्कार और सभी सखियों और सखाओं को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और बताइए क्या हाल चाल है
1: भाई। हाल चाल तो अच्छी है। हाँ थोड़ा सा मौसम का असर है,
0: सर्दी जुकाम
1: हल्का मौसम का बदलाव आती ही ना सबसे पहले शरीर पर उसका असर होता है, आपके मन पर उसका असर होता है और थोड़ा सा आप प्रभावित हो ही जाते हैं।
0: पर ऐसा है ना कि जब हम इस मंच पर आते हैं तो उन सारी बातों को हम भूल जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, जब आप बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मिलन समारोह तो ये हमारे एक तरह से पारिवारिक मिलन समारोह ही है,
0: यानी हर दिन होता है श्रोताओं और सखियों के संग में।
1: बिल्कुल, तो वो हमारे परिवार का ही हिस्सा हो गए हैं तो हम सब एक तरह से रोज ही मिलते हैं इस कार्यक्रम के मंच पर और हम ठीक हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जी जहाँ हम अपनी बात साझा कर लेते हैं।
0: और ऐसा है ना कि ये तो हमारे पारिवारिक मिलन समारोह की बात हुई, पर आजकल ऐसा हो रहा है ना कि नए जमाने के जो युवा वर्ग है इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनका इस तरह के मिलन समारोह में उपस्थिति कम हो जाती है।
1: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि उनकी जिंदगी में जो है व्हाट्सएप या इंटरनेट या ना ये ट्विटर सोशल मीडिया ज्यादा उनके परिवार का हिस्सा बन गए हैं और वो जो आभासी दुनिया है ना वो उनकी दोस्त ज्यादा बन गई,
0: उन्हें ज्यादा लुभाती है।
1: हाँ तो पारिवारिक मिलन समारोह में वो कम से कम उपस्थित होना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और एक बात मैं और कहना चाहूंगी सोनाली, कई जगह यहाँ पर माता पिता को भी मैं थोड़ा सा दोष देना चाहूंगी जहाँ वो कहते हैं अरे हमारे बच्चे तो कहाँ आ पाएंगे, घर में बैठे हैं, बिजी हैं, पढ़ रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं लाते अपने बच्चों को किसी पारिवारिक मिलन समारोह में लेकर,
0: या उनके हिसाब से इस तरह का आयोजन हो जैसे बच्चों को पसंद है कि कुछ गेम हो, कुछ अलग बातें हो, कुछ उनकी पसंद का खाना हो।
1: हाँ।
0: तो फिर वो भी आएंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है ना कई बार जब बच्चे या युवा वर्ग खासकर मिलते हैं तो बड़े बुजुर्ग उन्हें सिर्फ सलाह देने लगते हैं, भाई क्या है आजकल तो तुम्हारे बाल ऐसे हो रहे हैं या फिर तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल में ही होता है, उनसे कुछ अच्छे विचार व्यक्त किए, अच्छी तरह से बात की तो वे भी शामिल होंगे।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सोनाली, लेकिन मैं तो यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को आपको हरफनमौला बनाना चाहिए कि वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लें। उनकी शर्तों के अनुसार कार्यक्रम रखा जाएगा, उनकी शर्तों के अनुसार खाना रखा जाएगा या उनकी शर्तों के अनुसार हमारी दादी नानियां या दादा वगैरह कुछ कहेंगे, ऐसा हर वक्त होता नहीं है। जिंदगी है तो सुझाव उलहना शिकायतें ये सब चलता रहता है, लेकिन एक युवा को खासतौर से जो हमारे बच्चे युवा होते बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इस माहौल में भी वो रच बस जाएं और अपनी उपस्थिति जो है छोड़ जाएं।
0: जी यानी इस तरह के आयोजन अगर घर में बार बार होंगे तो युवा वर्ग आएंगे ही।
1: हाँ उन्हें आना पड़ेगा और उनके अंदर एक जो है कहते हैं ना कि मिलने जुलने की भावना हमें पैदा करनी होगी कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वो किस तरह से पेश आए, जो छोटे बच्चे हैं वहाँ उनके साथ किस तरह से पेश आए और जो अपने समकक्ष हैं अपने बराबर है उनको किस तरह से वो ट्रीट करें
0: जी,
1: तब जाकर एक अच्छा मिलन समारोह बन सकता है। यूं कहिए कि परिवार में सभी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती
0: जी।
1: है।
0: और ऐसा होता है जब हम मिलते जुलते रहते हैं और हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां आई भी तभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई है, एक विश्वास होता है कि कोई हमारे साथ है और हमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो शब्द हमारा

0: विचार आपके, इसमें आज का शब्द है विश्वास।
1: विश्वास बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत ही विश्वास वाला शब्द है ये विश्वास।
0: यानी हमारे मन को एक अलग ही सुकून मिलता है।
1: हाँ,
0: शब्द के साथ
1: पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जब जिंदगी में कदम रखते हैं ना, तो ये विश्वास शब्द हमारे साथ हमेशा रहता है
0: जी,
1: है ना।
0: और साड़ियों का संसार,
1: मेखला चादर,
0: आसाम ले चलेंगे सबको।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर साड़ियां हैं वहाँ की। मेखला चादर जब आप पहनते हैं तो उसके पहनने का तौर तरीके का, उसके पहनने के जो अलग अलग तरीके हैं,
0: दो हिस्सों में होती है।
1: हाँ, और वो मतलब एक अलग ही लुक देती है आपको। और वहाँ का जो डिजाइन है, जो प्रिंट है, जो कपड़ा है, वो भी बिल्कुल अलग होता है। एक आप चादर के रूप में लपेटते हैं और दूसरा आप उसको मेखला जिसे कहते हैं
0: कमर में लपेटते हैं।
1: और उसका जो ब्लाउज है वो भी एक अलग ही तरीके की आपको इमेज देता है
0: जी। और व्यंजन में साबुत अनाज के व्यंजन, यानी प्रोटीन से भरे साबुत अनाज जो होते हैं, ऐसा खासकर कहा जाता है कि शाकाहारी लोगों की जो थाली में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, तो ये साबुत अनाज अगर हम अपने व्यंजन में शामिल करें तो प्रोटीन की कमी महसूस नहीं होगी हमें।
1: बिल्कुल, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाना खाते हैं उसमें साबुत दाने खासतौर से अगर हम ले लेती हैं तो बहुत हद तक हम इस बात से दूर हो जाती हैं कि हम प्रोटीन इसमें नहीं खाते हैं।
0: और उसके अलग अलग तरह के जब व्यंजन बनाते हैं तब तो फिर वो हमारे स्वाद में और भी बढ़ोतरी होती है।
1: हाँ, खासतौर से हमारे बच्चे जो हर बात पर नाक घोंसी कोड़ते हैं और अगर उन्हें साबुत दाल दे दी जाए तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो साबुत दाल के चिल्ले बनाकर, साबुत दाल के अन्य तरीके के व्यंजन बनाकर हम उन्हें कम से कम प्रोटीन युक्त भोजन जो है दे सकते हैं। और अब हम क्या दे सकते हैं,
0: एक सुंदर सा गीत दे सकते हैं।
1: इसमें भी बहुत प्रोटीन होता है।
0: सुनते हैं
1: ये गीत।
2: वही

0: हाँ, तो बहुत ही एक क्लासिक गीत अभी आपने सुनवाया, हमें सुना ली।
1: और हम जो है भैया धरने की बात कर रहे हैं। गाना ऐसा हो गया कि भैया ना धरो, बहुत सुंदर सा गाना हमने सुना सखियों के संग। और जैसे पारिवारिक मिलन समारोह की बात चल रही है मंदाकिनी जी, तो पारिवारिक समारोहों में त्योहार, लोकगीत, पारंपरिक भोजन, पूजा पद्धति, पारिवारिक रीति रिवाज और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किए जाते हैं। इससे हमारी परंपराएं केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहती है बल्कि अगली पीढ़ी तक जीवंत रूप से पहुंचती भी है।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे सोनाली कि पारिवारिक मिलन कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में, और ये जो समारोह ये एहसास कराता है कि व्यक्ति अकेला नहीं है, परिवार उसके साथ है और परिवार उसके सुख में खुशी मनाने के लिए और कठिन समय में उसका साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और यही भावना परिवार को भावनात्मक रूप से भी मजबूत बनाती है।
1: और ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्ते केवल खून से नहीं, समय देने और साथ निभाने से मजबूत होते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के सदस्य अपने अपने जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए है कि साथ बैठकर बातचीत करने का समय ही कम मिलता है। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह रिश्तों में नई ऊर्जा और अपनापन भरने का सुंदर अवसर बन जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हंसना, बातें करना, साथ साथ भोजन करना, ये सभी चीजें हमें बहुत खुश कर देती हैं। रोजमर्रा के तनाव और व्यस्तताओं से अगर कुछ समय हम निकाल लेते हैं अपने परिवार के साथ तो एक राहत भी मिलती है, और एक दूसरे की उपस्थिति से क्या होता है, व्यक्ति को या हम सभी को भावनात्मक सुरक्षा और संतोष का भी एहसास होता है।
1: कभी कभी ऐसा होता है ना कि नौकरी के कारण किसी को जो परिवार के सदस्य है उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, तो कोई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसे में पारिवारिक मिलन समारोह एक ऐसे अवसर होते हैं जब सभी लोग अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर परिवार के साथ सुखद समय बिताते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के जब समारोह होते हैं तो हम सब बहुत ही खुशी के साथ उसमें शरीक होते हैं, और एक सफल पारिवारिक मिलन समारोह भी हमें ये संदेश देता है कि परिवार की शक्ति उसकी संख्या में नहीं बल्कि उसके प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति सम्मान और सहयोग से होती है। तो जब परिवार एकजुट रहता है सोनाली, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी थोड़ा सा अपने आप को सहज महसूस करते हैं।
1: हमारे साथियों ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं इस विषय पर। हमारे एक साथी कहते हैं, हमारे भारत में यहाँ बसे पारिवारिक समारोह यानी कि बच्चों का जन्म होना, मुंडन, शादी ब्याह, मृत्यु से लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेल जोल बना रहता है और सामूहिक सौहार्द भी बना रहता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार हमने देखा होगा कई परिवारों में प्रेम ज्यादा नहीं महसूस करते, हमें लगता है कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बहुत कम मिलते जुलते हैं, आपस में कम समारोह में इकट्ठा होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ शायद प्रेम कम हो गया है और रिश्ते कहीं कमजोर हो गए हैं। तो वो इसलिए नहीं होते कि उनमें संवाद नहीं हुआ है या एक दूसरे का साथ नहीं देते, बल्कि कहीं ना कहीं भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं, विश्वास कम हो गया है, एक दूसरे को कहने सुनने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई है, एक दूसरे को हम शिकायतें कर देते हैं, समझ नहीं पाते जी देखो, और दूरियां बना लेते हैं।
1: और क्या कैसे होता है ना कि मंदाकिनी जी, कभी कभी ना हम कहते हैं ना जजमेंटल हो जाते हैं कि उनके प्रति हम एक धारणा बना लेते हैं कि वो तो अब जैसे उसके घर की कुछ बातें होंगी कि वो शायद दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, पर हमें ऐसे लगता है कि देखिए उन्हें

0: घमंड आ गया है, वो तो हमसे मिलना नहीं चाहते, पर ऐसा नहीं होता है। किसी किसी की परिस्थिति के कारण कुछ व्यक्ति इस तरह से व्यवहार करते हैं। वैसे हमारे एक साथी ने लिखा है कि परिवार के साथ पॉजिटिव रिलेशन होने से आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है और आप अपने एंग्जाइटी और चिंताओं को दूर कर पाते हैं और मुसीबत में होने पर आपको सही मार्गदर्शन और सलाह मिल पाती है। जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे घिरे होने पर आपकी मानसिक स्थिति में सुधार आ सकता है और चुनौतियों से उभरने के लिए आपको एनर्जी मिल सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर लिखा है। और मुझे एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि पारिवारिक जो बंधन है उससे आप मजबूत होते हैं, बीते सालों की खूबसूरत यादों का सृजन होता है, घर के बुजुर्गों से बच्चों और युवाओं को अपने पूर्वजों से जुड़े पारिवारिक इतिहास के बारे में, उनकी जड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। और मैंने भी हमारे पिछले 7 पीढ़ियों तक का वटवृक्ष बनाकर हमारे कंप्यूटर ट्री ऐप पर डाला हुआ है, जिसमें मेरे पोते से लेकर दादा परदादा तक की सारी जानकारियां हमने साझा कर रखी हैं।
0: वहीं एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बिखरी हुई जड़ों को फिर से सींचने का अवसर है। जहां वर्षों से दूर रहे चेहरे एक ही आंगन में मिलते हैं तो समय जैसे थमसा जाता है। पिता की झुकी हुई पीठ में बचपन का सहारा दिखता है, माँ की आंखों में वही पुरानी ममता लौट आती है और भाई बहनों की हंसी फिर गूंज उठती है। ये मिलन हमें याद दिलाता है कि नौकरी, शहर और व्यस्तताओं ने हमें कितना भी दूर कर दिया हो, हमारा अस्तित्व आज भी उसी एक थाली, उसी एक कहानी, उसी एक आशीर्वाद से बंधा है, जो अगली पीढ़ी को भी सिखाता है कि परिवार वो अंतिम घर है जहाँ लौट कर आदमी फिर से पूरा हो जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में कहा, काश हम सभी ऐसा समझें, सोचें और इस तरह की जो जीवनचर्या बिताएं, तो हमें लगता है कि जो आजकल एकल परिवारों की जो प्रथा चल निकली है जी, उसमें बहुत कमी फिर से आने लगेगी,
0: या उसमें जो है ना जो सुधार हो जाएगा कि हम दूर दूर जाने लग गए हैं एक दूसरे।
1: हाँ, हम अकेलेपन के आदि हो गए हैं, हम अकेलेपन में रहना चाहते हैं, मेरा परिवार मेरे बच्चे जिस तरह की भावना हमने रख ली है, हम ये भूल जाते हैं कि जो हमारा परिवार है, हमारे जो सास ससुर हैं या माता पिता हैं, वो भी किसी न किसी से जुड़े हुए हैं और उन्हें भी उस साथ की जरूरत है।
0: और बच्चे भी ना शेयरिंग और केयरिंग सीखते हैं, क्योंकि घर में आजकल एक या दो ही बच्चे होते हैं, उनका सब चीज पर्सनल होता है, उनका खिलौना अलग, उनका बिस्तर अलग, उनका कमरा अलग, उनकी किताबें अलग है। तो जब घर में परिवार के दूसरे लोग आते हैं गेट टुगेदर के खाने, उस वक्त वो उनकी थाली में खाएंगे, उनके खिलौने खेलेंगे,
1: अपनी चीजों को देना सीखेंगे। जब आप उन्हें बताएंगे कि बेटा आप अपनी चीजें इन्हें भी दे सकते हैं, तो उनके अंदर ये भावना पनपती है कि हम मिलजुल कर रहे हैं, है ना। और एक श्रोता लिखते हैं कि रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी के कारण अक्सर लोग अपने ही परिवार के सदस्यों से दूर हो गए हैं। पारिवारिक मिलन समारोह सभी को एक जगह इकट्ठा होने का अवसर देता है, एक साथ बैठकर बातचीत करना, पुराने दिनों को याद करना, सुख दुख साझा करना, प्रेम विश्वास सौहार्द, ये सभी बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे अक्सर दूर के रिश्तेदारों जैसे चाचा चाची, बुआ मौसी, चचेरे भाई बहनों को ठीक से नहीं जानते। ऐसे समारोह के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने परिवार के इतिहास, परंपराओं और मूल्यों को जानने का मौका मिलता है और ये बच्चों में पारिवारिक संस्कारों को विकसित करने का एक बेहतरीन मंच भी है।
0: एक साथी कहते हैं कि पारिवारिक मिलन समारोह मैंने शहरों में देखा है, जहां पर हर त्योहार पर लोग एक पार्क में या किसी के घर के लॉन में मिलते हैं और अपने सुख दुख बांटते हैं। हमारे गांव में दिवाली के अगले दिन अक्सर सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि इस त्योहार पर जो बाहर नौकरी करते हैं वे सब भी परिवार सहित छुट्टी मनाने आते हैं, तो उनसे लोग ज्यादा घुलते मिलते हैं और बच्चे इनाम भी मांगते हैं। हाँ, दूसरा मौका होली का होता है, जब होली के दिन सारा गांव एक रंग में रंगा होता है और दोपहर के बाद नए कपड़े पहनकर सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और गुजिया खाते हैं, खिलाते हैं, भाग पर तरह तरह के गीत गाते हैं, पूरा गांव मस्ती में झूमता है। अब तो लोग ऐसे कुछ उन्होंने अलग बातें भी लिखी हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी फैमिली में चाचा चाची, उनके लड़के लड़की कुल मिला के 45 लोग हैं। हम सब हर साल समर वेकेशन में एक दिन की पिकनिक टूर पर जाते हैं, धार्मिक स्थल, दरिया का किनारा, फार्म हाउस, वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, गेम्स खेलते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, ग्रुप फोटोग्राफी करते हैं। उस दिन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, सब एक दूसरे की मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा टूर होते रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते, परिवार हमारी शक्ति है और आंतरिक ऊर्जा का केंद्र है, इसके बल पर ही हम सामाजिक जीवन का सर्वोच्च प्राप्त कर सकते हैं। ये संस्कृति और जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी है। परिवार से ही हमारे भीतर सद्गुणों का विकास होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में उसके परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है।
1: बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान होता है। और एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे भारत में तो यहाँ पारिवारिक समारोह बच्चे पैदा होने में, मुंडन, शादी, विवाह, मृत्यु तक बहुत से होते हैं। कुछ परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा होते हैं, इस तरह पारिवारिक मेलजोल बनता है और सामूहिक सौदा

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी हैं सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर। हाँ तो सोनाली, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही असम की सांस्कृतिक पहचान मेखला चादर के बारे में।
2: इन्हें चलते हैं असम की ओर।
0: हाँ बिल्कुल, चलिए।
2: मेखला चादर, असम के इसे मेखला चादोर भी कहते हैं। असम की सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक पोशाकों में से एक है। इसकी खासियत केवल इसकी सुंदरता नहीं बल्कि इसके पीछे छिपी सदियों पुरानी बुनाई कला और असम के जीवन से जुड़ी परंपराएं भी हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और मेखला चादर पर जब हम बात कर रहे हैं तो

0: के मुख्यतः दो हिस्सों से बनकर एक बड़ी सुंदर पोशाक बनती है, मेखला और चादर। तो मेखला इसका निचला हिस्सा होती है जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और इसे विशेष ढंग से मोड़कर सामने की ओर इसकी प्लीट्स बनाई जाती है जो कि बहुत ही सुंदर लगती है।
1: और चादर जिसे कई बार सादोर या चादोर भी कहा जाता है, इसका ऊपरी हिस्सा है, इसे शरीर के ऊपरी भाग पर लपेटकर कंधे पर यानी कंधे पर रखा जाता है।
0: तो इस तरह दोनों हिस्से मिलकर क्या बनते हैं,
1: मेखला चादर। और मेखला चादर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हस्त बुनाई है। असम में बुनाई के रोजगार का साधन नहीं बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा भी रही है।
0: हाँ, और असम की बुनाई में प्रकृति की हमें झलक भी दिखाई देती है। इसमें फूल, पत्तियां, पक्षी, ज्यामिति आकृतियां और पारंपरिक प्रतीक इसके डिजाइनों में नजर आते हैं। इसीलिए हर सुंदर मेखला चादर अपने भीतर बुनकर की कल्पना और मेहनत की कहानी भी कहती है।
1: और मेखला चादर में असम के विभिन्न प्रकार के रेशम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मूंगा सिल्क या इसे मूंगा सिल्क भी कहते हैं। असम का मूंगा रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरी चमक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ये मजबूत और टिकाऊ भी माना जाता है और मूंगा सिल्क की मेखला चादर को बहुत प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
0: हाँ, इसके अलावा पाट रेशम मुलायम और चमकदार होता है और इससे बनी मेखला चादर विशेष अवसरों पर खूब पसंद भी की जाती है।
1: साथ ही एरी सिल्क, एरी रेशम को असम की रेशम परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इसकी बनावट अपेक्षाकृत गर्म और मुलायम होती है।
0: हाँ, और मेखला चादर में रंगों का जो संयोजन है वो बहुत ही सुंदर होता है सोनाली। लाल, क्रीम, सुनहरा, हरा, सफेद और गहरे रंगों के साथ पारंपरिक बॉर्डर बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाए जाते हैं
1: और इसके बॉर्डर और पल्लू जैसे हिस्सों पर पारंपरिक असमिया आकृतियाँ इसकी सुंदरता बढ़ाती है। फूल, पत्तियां, मोर, पक्षी और ज्यामितीय पैटर्न इसकी लोकप्रिय डिजाइन है।
0: हाँ बिल्कुल, और असम का जो प्रसिद्ध बिहू त्योहार है ना, मेखला चादर से गहराई से जुड़ा हुआ भी है ये त्योहार। विशेष रूप से बोहाग बिहू के अवसर पर महिलाएं जो हैं पारंपरिक मेखला चादर पहनती हैं और इस उत्सव में शामिल भी होती हैं। बिहू के गीत हैं, नृत्य हैं और पारंपरिक परिधान जब मिलकर असम की जो संस्कृति है उसकी सुंदर तस्वीर हमारे सामने एक पेश करते हैं।
1: और मेखला चादर का इस्तेमाल विवाह समारोह, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य पारंपरिक अवसरों पर भी किया जाता है। दुल्हन की मेखला चादर पर अक्सर जटिल बुनाई, सुंदर बॉर्डर और पारंपरिक रूपांकन दिखाई देते हैं।
0: हाँ, और मेखला चादर इसके आधुनिक रूप भी अब आ गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न रूप भी आने लगे हैं जिनमें पारंपरिक बुनाई के साथ नए रंग आ गए हैं, नए डिजाइन आ गए हैं। और ये केवल पारंपरिक अवसरों तक नहीं बल्कि आम प्रोग्राम्स में या डेली रूटीन में भी वहाँ की महिलाएं जो हैं
1: पहन सकती हैं।
0: जो नौकरी में जाती हैं वो महिलाएं भी मेखला चादर पहनती हैं और वो कॉटन के बने जो मेखला चादर है वो पहनावा में है।
1: मेखला चादर को केवल एक वस्त्र कहना इसके महत्व को कम कर देना होगा। ये असम की पहचान, लोक कला, बुनकरों की मेहनत और महिलाओं की रचनात्मकता का भी प्रतीक है। इसके हर धागे में असम की प्रकृति की छाप दिखाई देती है। कहीं ब्रह्मपुत्र की विशालता, कहीं हरे भरे जंगलों की छटा और कहीं स्थानीय लोक कला की इसमें झलक दिखाई देती है।
0: बिल्कुल, और मेखला चादर असम की एक ऐसी विरासत है जिसने पहनावे के साथ इतिहास है, कला है, संस्कृति है और ये केवल शरीर को सजाने के लिए कोई वस्त्र नहीं है सोनाली, बल्कि असम की पहचान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली एक जीवंत परंपरा का भी नाम है मेखला चादर। और अब ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जी।

0: तो बहुत ही सुंदर गीत लगा, ऐसा लगा कि हम मेखला चादर पहनकर ये नृत्य कर रहे हैं, है ना
1: जी। और एक हमारी सखी ने लिखा है कि असम घूमने गई थी तब वहाँ की महिलाओं को मेखला पहनते हुए देखा तो मुझे अच्छा लगा। दुकान में हर तरह के मेखला उपलब्ध है, सस्ती भी है और महंगी भी है, कॉटन में, चंदेरी सिल्क में, और ये उनका पारंपरिक ड्रेस है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने लिए तो नहीं पर किसी ने मुझसे मंगवाया था तो उनके लिए लेकर आई थी। हल्का क्रीम कलर का सिल्क पर रेड बूटी और बॉर्डर वाली बेहद खूबसूरत मेखला थी।
0: क्या बात है, तो आपने खुद के लिए क्यों नहीं खरीदा भाई?
1: हाँ ना, आज बोलती क्या मेरे पास भी मेखला है।
0: हाँ ये कहती ना कि मेखला है, यहाँ मैं कहूंगी मेरे पास मेखला है।
1: है आपके पास मेखला? अरे वाह, अभी पहनकर आइएगा।
0: बिल्कुल, मैं पहन के आई थी, आपने मुझे नहीं देखा शायद, आप उस दिन नहीं थी ऑफिस में। और अभी आपको एक बात बताऊं, जब मैं अपनी एक यात्रा में कहीं गई थी बाहर तो मेरी एक दोस्त अचानक स्टेशन पर आई जहां पर ट्रेन रुकी हुई थी, और उन्होंने आते ही मुझे उठाया और बोले अरे सो रही, उठ, मेरे लिए मेखला लेकर आई।
1: ओहो
0: सच में? तो ऐसा भी होता है कई बार कि जब आप नहीं सोच रहे होते अनएक्सपेक्टेड उपहार आपको मिल जाते हैं।
1: तो अगले इसमें यही सब्जेक्ट ले लेंगे
0: कि आपको न चाहते हुए भी बहुत कुछ मिल जाता है,
1: सरप्राइज गिफ्ट
0: मिल जाते हैं
1: जी।
0: तो चलिए हमारे, और हमने एक नया आज शब्द लिखा है विश्वास, उस पर हम बात करने वाले हैं
1: जी,
0: जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत शब्द है।

0: अर्थ लिए और हमारे जीवन में इसका होना बहुत जरूरी है।
1: और ये श्रोताओं का सेगमेंट है, तो श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं विश्वास पर,
0: तो उन्हें विश्वास है ना हम पर कि हम उनके सेगमेंट को पढ़ना पसंद करेंगे और ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए है, तो उन्होंने हमारे विश्वास को बनाए रखा है।
1: जी, एक साथी कहते हैं विश्वास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विशेष आस या विश्व आस। विश्व है तो आस है, अगर विश्व में हम आस रखते हैं तो ये बात खास है। संसार में हर कोई चाहता है हर इंसान उस पर विश्वास करे, लेकिन वो दूसरों पर जल्द विश्वास नहीं कर पाता। विश्वास किसी व्यक्ति, वस्तु,

0: मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि हमारे कमेंट जरूर शामिल करेंगी। ये मानवीय संबंधों की नींव है जो आपसी रिश्तों, समाज और आध्यात्मिकता को आपस में जोड़कर रखती है। दूसरों की ओर से विश्वास रखने की आस रखने के साथ खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास होना भी जरूरी है। यस आई कैन डू इट।
1: बिल्कुल, आत्मविश्वास और विश्वास ये दो शब्द बहुत जरूरी है जीवन में
0: जी।
1: खुद पर विश्वास होना और दूसरों पर भी विश्वास करना। हाँ, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए
0: जी,
1: है ना, उससे हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, लेकिन विश्वास जीवन में बहुत जरूरी है। एक श्रोता लिखती है कि शब्द हमारे विचार आपके में, कितना सुंदर आपने शब्द चुना है विश्वास। विविध भारती के शब्द जब श्रोताओं तक पहुंचते हैं तो उनके विचारों से मिलकर और भी खूबसूरत हो जाते हैं। कभी कोई गीत याद बन जाता है, कभी कोई बात दिल को छू जाती है। बस यही तो विविध भारती की खासियत है, आवाज आपकी और लिखा हुआ हमारा जब दोनों मिलकर कुछ पढ़ते हैं तो कुछ मस्त सा रचते भी हैं। और एक श्रोता लिखती है कि विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक और परिणाम देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
0: एक साथी कहते विश्वास एक नींव की तरह होता है जिस पर हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत खड़ी होती है। इंसान के सभी कार्यकलाप, लेन देन, आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे चलते हैं। घर में माता पिता को अपनी संतान पर विश्वास रहता है कि वे कोई गलत काम नहीं करेंगे। दुकानदार भी पैसे बाद में आ जाएंगे के विश्वास पर ग्राहक को सामान उधार दे देता है। बिल पर जो भूल चूक लेनी देनी वाक्य लिखा होता है व्यापारी और ग्राहक के आपसी विश्वास की लिखित गारंटी होती है। बैंक में, नौकरी में तो हर व्यवहार विश्वास के आधार पर ही होता है। सच भी यह है कि विश्वासघात भी वही होता है जहां विश्वास होता है। विश्वास के मामले में सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला सिद्धांत लागू होता है। किसी पर इतना भी विश्वास न करके बाद में पछताना पड़े और नहीं इतना अविश्वास दिखाए कि आप अपनी ही विश्वसनीयता खो बैठे।
1: बहुत सुंदर कि आप धोखा भी न खाएं और अविश्वास भी न करें। मतलब कितनी महीन रेखा है ना हर रिश्ते के बीच
0: में
1: जो हमें मेंटेन रखनी होती है
0: जी।
1: बैलेंस बनाकर जीवन में चलना पड़ता है
0: और जो बैलेंस बना के रखता है उसका जीवन सफल
1: होता है। तो एक श्रोता लिखनी कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे वो माता पिता, बच्चों का हो, मित्रों का हो, व्यापार का हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास की जो कमी होती है वो आत्मविश्वास व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास सामाजिक जीवन को सुखमय बना देता है।
0: एक साथी कहते हैं विश्वास एक ऐसा अदृश्य धागा है जो रिश्तों को मजबूती से बांधे रखता है। इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, लेकिन इसकी मौजूदगी हर रिश्ते में महसूस होती है। जहां विश्वास होता है वह शब्द कम और भावनाएं अधिक बोलती है। विश्वास पाने में समय लगता है लेकिन इसे खोने में एक पल भी काफी होता है। इसलिए कि किसी के विश्वास को जितना महत्वपूर्ण होता है उसे निभाना उससे भी अधिक जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा, सुंदर हमारे श्रोताओं ने लिखा है।
0: जीवन का सारी लिख दिया
1: है कि वाकई हम विश्वास जमाते हैं ना सोनाली, पूरी जिंदगी निकल जाती है किसी पर विश्वास जमाते। एक सेकंड लगता है उस विश्वास को तोड़ने में
0: जी।
1: आप एक सेकंड लगाते हैं
0: जी।
1: तो कितना रिश्तों में सोचिए कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है।
0: एक साथी कहते हैं एक विश्वास ही है जो एक बार टूट जाए तो जीवन भर नहीं जुड़ता, इसलिए सावधान रहे, इसे कभी टूटने न दे।
1: सबसे बड़ी बात यह है। एक श्रोता लिखती है कि विश्वास वो अद्भुत और अलौकिक अदृश्य धागे की डोर है जो हमें बांधती है, जिसके हम विश्वास पात्र होते हैं। और इस धागे में जब स्नेह, सद्भाव और प्रेम का मांझा चढ़ता है फिर तो दो हृदय नहीं अभी तो उनसे अनुस्यूत समस्त विश्व की दुख दारिद्र्य से रहित हो जाए, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए।
0: और अब गीत सुन लेते हैं
1: हमारे श्रोताओं का भी तो हम पर विश्वास है ना
0: कि गीत सुनवाएंगे।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो सोनाली, हमारे श्रोताओं ने विश्वास जैसे शब्द पर बहुत अपने सुंदर विचार हम तक पहुंचाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विश्वास एक ऐसा चमत्कारी शब्द है, ये अगर किसी इंसान के पास हो तो वो उस इंसान को खाक से उठाकर फलक पर बैठा देता है। वो इंसान असंभव को संभव कर सकता है। पहला अटूट विश्वास परम पिता परमेश्वर पर, माता रानी पर, दूसरा अटूट विश्वास खुद पर। और मैंने इसी अटूट विश्वास से जीवन में कई लक्ष्य हासिल किए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्मपत्नी का विश्वास कभी कभार डगमगा जाता है, तो मैं उनको हौसला बढ़ाता हूँ ये बताने पर, आज जरूर घर पर धर्मपत्नी की डांट सुननी भी पड़ सकती है।
1: जी, एक साथी कहती है कि जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास की आवश्यकता होती है, चाहे माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, मित्रों संबंध हो या व्यापार हो। सफलता की पहली सीढ़ी विश्वास ही है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ने की शक्ति देता है, जबकि दूसरों पर सही विश्वास और सामाजिक जीवन को सुखमय बनाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे बहुत सारे श्रोता विश्वास जैसे शब्द पर अपने विचार लगातार हम पर भेज रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं वही जो कि विश्वास एक नींव की तरह है जिसे हमारे सामाजिक और व्यावसायिक रिश्तों की इमारत भी खड़ी होती है, और इंसान के सभी कार्यकलाप लेन देन आपसी व्यवहार विश्वास के सहारे ही चलते हैं।
1: एक साथी कहते हैं विश्वासम फलदायकम एक प्रसिद्ध सूक्ति है, जिसका अर्थ है कि विश्वास हमेशा फलदायी यानी सार्थक या परिणाम

0: देने वाला होता है। खुद पर और दूसरों पर भरोसा रखने से मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू में सफलता मिलती है।
1: बिल्कुल मिलती है, और यही विश्वास है जो सखी सहेली के मंच पर हम कायम रखते हैं, हमारे सखी और सखाओं के साथ विश्वास बनाए रखते हैं और वो भी अपने विश्वास पर पूरा खरा उतरते हैं। तो एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं
1: और फिर क्या करेंगे हम,
0: व्यंजन की ओर बढ़ेंगे।
2: ये रातें, ये मौसम।

0: मंदाकिनी जी, हमारे एक सखा मित्र, उन्होंने लिखा है कि मैं करीब 25 सालों से विविध भारती सुन रहा हूं और विविध भारती से जुड़ा हूं। आपने जो हमारे आसाम के मेखला चादर के बारे में विस्तार से जानकारी दी सारे सखियों को, मुझे बहुत अच्छा लगा।
1: अरे वाह, अभी उससे पहले भी सोनाली आप बता रही थी कि काफी लोग आसाम से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम, और मेखला चादर पर हमने बातचीत की है तो वो काफी खुश भी है
0: जी।
1: अच्छा भी लगता है ना जब हम अपने प्रांत की कोई चीज, वेशभूषा या व्यंजन पर बातचीत सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी भी होती है।
0: और एक जैसे साबुत अनाज की बात चली है तो हमारी एक सखी ने लिखा है कि साबुत अनाज से सबसे जो पौष्टिक है ना उसमें थोड़े से हरे मूंग या काले चने भिगा दे और उसका पानी निकाल दे और अंकुरित हो गए फिर उसमें प्याज, नमक, ककड़ी, टमाटर, नींबू मिलाकर मस्त सा सलाद बनाकर खाए, या फिर ऐसे ही खाए। हमने तो मस्ती में लिख दिया, पता ही नहीं आप पढ़ेंगी या नहीं पढ़ेंगी।
1: अरे देखिए, आपने मस्ती में लिखा और हमने इसको गंभीरता से ले भी लिया है ना, कि भाई ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हम रोजमर्रा की रूटीन के खान पान में शामिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर हम नहीं बना सकते साबुत अनाज का कोई व्यंजन तो हम इसे तो कम से कम शामिल कर ही सकते हैं।
0: और इसे बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है, बस उसे रात को भिगोना है हमें
1: और सुबह ककड़ी, प्याज, टमाटर, धनिया डाल के उसको बना के हल्का बॉईल करके आप खा सकते हैं, नमक और काली मिर्च डालकर भी।
0: और अगर वो बच गए तो उसको पीस लिया, उसके चीले बन गए।
1: चीले बन गए, क्या बात है। तो एक श्रोता लिखते हैं कि होल ग्रेन दलिया को, यानी साबुत गेहूं का जो दलिया है, दूध या सब्जियों के साथ पकाकर एक पौष्टिक नाश्ता तैयार किया जाता है। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मसाला ओट्स, ओटमील, साबुत जई को पानी या छाछ में सब्जी के साथ उबालकर तीखा या नमकीन दलिया भी बनाया जा सकता है। और ओट्स को पीसकर उसमें बेसन, हरी मिर्च और सब्जियां मिलाकर तवे पर चीला बनाएं तो एक झटपट हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार हो सकता है।
0: साथ ही रागी या मड़ुआ भी कहते हैं, इसके दोसे, लड्डू, रागी कैल्शियम का बेहतरीन स्रोत है। इसके आटे

0: बने कुरकुरे, डोसे कम घी गुड़ वाले लड्डू भी बड़े चाव से खाए जाते हैं। वैसे ही ज्वार की रोटी, सर्दियों के मौसम में साबुत अनाज का खिचड़ा यानी जो ज्वारी है या फिर बाजरा है इसका खिचड़ा कहते हैं, इसे खिचड़ी की तरह बनाया जाता है उसे खिचड़ा कहते हैं, और गरम गरम इसकी रोटी भी बनाई जाती है बाजरा और ज्वार की, और इसे गुड़ और मक्खन के साथ परोसा जाता है।
1: बिल्कुल, जब खिचड़ी की बात चली ना तो हमारे राजस्थान में देखा जाता है कि एक अंगीठी पे बड़े पतीले पर इसको पानी में डालकर साबुत अनाज को पकाने छोड़ दिया जाता है, वो धीरे धीरे पकता रहता है घंटों, फिर उसमें नमक और देसी घी डालकर वो लोग खाते हैं, तो देसी भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं और काफी ताकतवर होता है,
0: बहुत ताकत होती है। बचपन में यही सब चीजें खा खा के हम लोग बड़े बुजुर्ग है ना, ताकतवान बने।
1: और इसके साथ वो दही या छाछ का प्रयोग भी करते हैं, हमने देखा हमारे पड़ोसी लोगों को कि वो एक बड़ा डोलू भरकर छाछ उसमें डाल के और उस खिचड़े का सेवन करते थे, तो बाकी वो गायों का काम करते थे तो उनकी शक्ति देखने लायक होती
0: थी। एक साथ ही कहते कि साबुत अनाज की व्यंजनों के में बाजरे के आटे के लड्डू बड़े ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते हैं, और बिल्कुल गेहूं के आटे के लड्डू की तरह ही बनाए जाते हैं, बस इसमें गुड़ डाला जाता है, तो गुड़ तो डालना ही चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, गुड़ डाल दीजिए वो ज्यादा अच्छा है। एक लिखते हैं साबुत गेहूं का दलिया आप बना सकते हैं और पाचन के लिए अच्छा है, और ज्वार की रोटी के बारे में भी लोगों ने काफी कुछ लिखा है। एक लिखते हैं भिगोए हुए इन साबुत अनाजों को आप थोड़ा थोड़ा मोटा दरदरा पीस लें और इनमें हींग नमक हरी मिर्च बारीक काट कर मिला लें, अब इसके छोटे छोटे टिकिया बनाकर या तेल लगे ट्रे या थाली में लगाकर आप इसे स्टीम कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे चकोर टुकड़े काट लें, इन टिकियाओं का जो स्टीम है किया गया है उन्हें आप सेलो फ्राई करके भी खा सकते हैं, ये ऊपर से कुरकुरे और भीतर से सॉफ्ट होते हैं, इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें इन्हें ज्यादातर आप भाप दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
0: और अच्छी मजेदार सी चटनी बना लो तो भाप वाले भी बिना तले बिना भुने वैसे ही
1: बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि डीप फ्राई अगर आप रोज खाएंगे तो फिर वो नुकसान करने लगता है। और साथ में आप कह रहे हैं कि प्याज टमाटर ग्रेवी डालकर इसकी सब्जी भी बना सकते हैं।
0: एक साथी ने लिखा है कि साबुत अनाज के मूंग के लड्डू, एक कटोरी खड़ा मूंग ले, उसे अच्छे से धोकर एक सूखी कढ़ाई में भून ले, और जब मूंग लाल हो जाए तो धीमी आंच करके जब ठंडा हो जाए तो मिक्सी में पीस ले छान ले, फिर आधा कटोरी शुद्ध घी में मूंग के आटे को 10 मिनट तक भूने, और बाद में एक कटोरी पीसी चीनी और अपने मनपसंद सूखे मेवे डालकर लड्डू बांध ले, लड्डू बांधते समय घी कम लगे तो थोड़ा घी और डाल दे, अपने स्वादिष्ट लड्डू तैयार हो सकते हैं। साथ ही चना जोर गरम भी बना सकते हैं ना, कि काबुली चने को भिगो के उबाल लिया और बस उसको थोड़ा थोड़ा ऐसा दबा लिया, प्रेस कर लिया उसे, ठीक है, चपटा कर लिया, और बस उसमें सारे प्याज टमाटर डाल के और उसमें चाट मसाला डाल के और वैसे ही खा सकते हैं नाश्ते, उसको तलते भी है और कुछ कुछ लोग सेक लेते हैं,
1: सेक ले वो जैसा आपको पसंद हो, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से आप खा रहे हैं तो ज्यादातर उसको डीप फ्राई नहीं करें
0: जी,
1: है ना। तो आज तो बहुत शानदार और जानदार रेसिपी हमारे श्रोताओं ने हमें लिख भेजी, और हम उम्मीद करते हैं घर पे बना के खाने वाले हम सभी, है ना
0: जी।
1: और अब एक गाना सुनिए
0: जी।

0: मंदाकिनी जी हमारे एक सखी लिखती है कि हमने मेखला पहनकर स्टूडियो में फोटो खिंचवाई थी और वहां से एक आसामी रेशम सिल्क की साड़ी भर लेकर ले आए थे, और एक सखी ने कहा कि हमने मेखला नहीं खरीदी पर हमने आसाम सिल्क की साड़ी भी खरीदी थी और फोटो खिंचवाई तो हमेशा के लिए जो हंसता हुआ नूरानी
1: चेहरा था वो कैद हो गया है। और यकीनन सोनाली तुम्हारी खूबसूरती पता है क्या है, तुम्हारा ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा ही,
0: और आपका भी।
1: ये तो एक दूसरे की तारीफ करना हो गया, हमारे सखी सखा कहेंगे कि सोनाली और मंदाकिनी बस एक दूसरे की तारीफ ही कर दी है।
0: हम श्रोताओं की भी तारीफ करनी है और उन्हें शुक्रिया कहते हैं
1: बिल्कुल
0: कि आपके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल, और उन्होंने हमें हंसने पर मजबूर भी कर दिया। तो चलिए, वो चाहे मेखला चादर पहनी या किसी भी प्रांत का कोई भी आप वस्त्र पहने, लेकिन आपका चेहरा हमेशा हंसमुख होना चाहिए और
0: खिलता मुस्कुराता होना चाहिए।
1: तो हंसी और हंसाइए, और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली
0: पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के मेहमान कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मंदाकिनी जोशी। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। दोस्तों कार्टून और कार्टूनिस्ट कला के ऐसे पहलू हैं जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं। बेजान रंगों और साधारण रेखाओं में जान फूंक कर जो दुनिया को हंसते हंसते बहुत कुछ सिखा जाए वही असली कार्टून है और उसे बनाने वाला कार्टूनिस्ट। तो विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने एक ऐसे ही शख्स को ऐसी

0: शख्सियत को ऐसे ही मेहमान को आमंत्रित किया है जो कार्टूनिस्ट हैं और अपनी इस कला से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं और हंसाते भी हैं। तो आप हैं जाने माने कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: वाह मंदाकिनी जी, आपको ही मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: और विविध भारती के असंख्य श्रोता जिन्हें हम बचपन से देखते सुनते प्रेम करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और आपका बहुत अभिनंदन है।
0: विविध भारती में आके आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे विविध भारती में आकर अपने एक पुराने चिर स्वप्न को पूरे होने जैसा लग रहा है। मैंने शुरू से विविध भारती को सुना, इसके साथ ही सांसें ली और मेरे क्रिएशन के बहुत सारे जो लम्हे हैं वो विविध भारती के साथ ही बीते हैं।
0: जी जी।
1: शुरू से इसके सारे कार्यक्रम वंदनवार से लेकर हवा महल और अच्छा? छाया गीत, ये सभी देखते सुनते और ये साथ साथ हमारी पढ़ाई भी चलती थी और जब कार्टूनिंग की तब भी विविध भारती हमारा साथ ही रहा। तो आज यहाँ आकर और जब आप सब लोगों से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वप्न लोक में विचरण कर रहे हैं।
0: तो आपके लिए आपके सपने पूरे होने जैसा है ये।
1: जी बिल्कुल सही बात है।
0: तो देवेंद्र जी, मैं अभी आपकी किताब देख रही थी धूप छांव, आप तो लेखक भी हैं और आपने इसमें उन नाटकों को लिया है जो हमारे विविध भारती के हवा महल कार्यक्रम से भी आए हैं।
1: जी हाँ जी।
0: तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कार्टून के बारे में तो आपकी बातचीत हमें करना ही है, तो लेखन की शुरुआत कब हुई?
1: लेखन की शुरुआत और ये कार्टून्स की ये कहना मुश्किल है कि कैसे, क्योंकि लगभग ये दोनों ही साथ ही चले। और शुरुआत में मैं कविताएं और लेख भी लिखा करता था अपनी समझ के हिसाब से, छोटे छोटे लेख कि लू लगने से अपने आप को कैसे बचाएं, या रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, या अखबारों जो आते हैं बाल स्तंभों में आई होली आई, उस तरह की ये रचनाएं ऐसी कविताएं लेख लिखते थे और साथ ही कार्टून्स भी बनाते थे। तो लिखने की शुरुआत का सिलसिला ऐसे जमा कि आकाशवाणी इंदौर से बच्चों की सभा प्रसारित होती थी हर संडे, तो उस वहां जाने का एक लिंक बना और मैं वहां पर जाने लगा नियमित। और वहां मैंने देखा किस तरह से बच्चे अपनी कविताएं पढ़ते हैं, अपनी बात कहते हैं धीरे धीरे धीरे। और वहां जो संयोजिका थी रंजी सतीश जी, उन्होंने विशेष मुझे स्नेह किया और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कार्टून्स भी बनाते हो तो तुम रेडियो कार्टून बनाओ।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो अपन प्रसारित करेंगे।
0: हाँ।
1: तो रेडियो कार्टून जो है उनके मार्गदर्शन में और कुछ अपनी सूझबूझ से हम लोगों ने डेवलप किया। तो एक बहुत जल्दी जल्दी जो पात्र बोलते थे बड़ी अपनी चुलबुली भाषा में, तो उस तरह से हमने नटखट्टू नाम का एक रेडियो कार्टून बनाया था और उसकी दो तीन कड़ियां प्रसारित हुई थी। तो इस तरह आकाशवाणी का माहौल जो है उसमें घुलने मिलने का अवसर मिला और ये सब साथ साथ ही चलता रहा सिलसिला। उसके बाद में फिर जब आगे चल के फिर ये महिला सभा में या युवाणी में, तो रीजनल प्रसारण के लिए फिर नाटिकाएं मैंने लिखी और बस ये रुचि बढ़ती गई, सिलसिला चलता गया।
0: तो हम कह सकते हैं कि बहुत पहले से ही रेखाओं और आकृतियों में आपकी दिलचस्पी थी।
1: जी।
0: लेखन और कार्टून के रूप में बाहर निकली।
1: बस बस यही समझ लीजिए। अब जैसे कार्टून्स में जो ऊपर कैप्शन लिखे होते हैं वो भी अपनी तरह का एक छोटा लेख ही होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत कुछ गागर में सागर का काम होता है।
1: जी आपने बिल्कुल सही कहा।
0: जी, तो कार्टूनिस्ट बनने के लिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन किन बातों का होना जरूरी होता है, मतलब कौन से गुण होने चाहिए कार्टून बनाते वक्त एक कार्टूनिस्ट में?
1: सबसे पहले तो उसको जिसे हम सेंस ऑफ ह्यूमर कहते हैं, हास्य की समझ, वो जरूरी है कि हमारे आचरण में वो चीज आ जाए कि हम जब बात करें तो थोड़ा हंसें बोलें, या कोई अगर हंस भी रहा है या उसने हम पे कटाक्ष भी किया तो हम रोने ना लग जाएं या तुनक मिजाजी ना बताएं, बल्कि उस चीज को एक कहते हैं हेल्दी वे में लेना चाहिए। और उससे ही धीरे धीरे एक वो इंसान का एक लहजा विकसित होता है, स्टाइल बनती है कि किस तरह से हम किसी को चोट पहुंचाए बिना हम कार्टून बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज हास्य की समझ, उसके बाद में ऑब्जर्वेशन, अपने आसपास की चीजों को देखना, अपने रीति रिवाजों को देखना, घटनाओं पर नजर रखना। तो ऑब्जर्वेशन और फिर पढ़ना बहुत सारा कि पहले हमारे साहित्यकार क्या लिख गए हैं, क्योंकि हम जब कार्टून बनाते हैं उसमें खबरें तो ठीक है, हमें खबर मिल गई, ताजा खबर उस पे बनाना है, लेकिन जो एक सलीका होता है, जो सीमा होती है, उसके लिए हम साहित्य जो हमारे पहले के लोग काम कर गए हैं अपने कथ्य से अपनी भाषा से, उस सबका हमको एक समझ मिलती है और समावेश करते हैं कार्टून।
0: बहुत बहुत गहरी बात कह दी आपने देवेंद्र जी कि

0: सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है और आसपास की घटनाओं पर.
1: बिल्कुल ठीक है.
0: तो सबसे पहला कार्टून आपने कौन सा बनाया था और वो दिमाग में कैसे आया?
1: सबसे पहला कार्टून मैंने बनाया, उसका मतलब किस्सा ये है कि पहले मैं दीवारों पे, दरवाजों पे, सब तरफ कार्टून्स बनाया करता था.
0: अच्छा.
1: क्योंकि छोटे थे
0: तो घर की दीवारें आपने खराब,
1: घर की दीवारें बहुत खराब करते थे. और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो घर के बड़े थे, माता पिता, वो लोग उसको बहुत ही खेल भावना से लेते थे, कभी नाराज नहीं हुए.
0: अच्छा.
1: उन्हें लगा कि चलो एक कला जो है वो जन्म ले रही है और विकसित हो रही है दीवारों पर ही सही. तो ये सिलसिला चलता था और उन लोगों ने आगे बढ़ाया. लेकिन हमारे एक ट्यूटर थे, उन्होंने कहा कि भाई तुम कब तक ये दीवारें खराब करोगे, तो कुछ कागज पे बना के और अखबारों तक पहुंचो.
0: हाँ.
1: तो ये छपने का सिलसिला होगा. तो उन्होंने ऐसी राह बताई. तो फिर हम 14 वर्ष के थे तो पहुंच गए अखबार में. तो वहां संपादक जी ने भी सब देखा, कार्टून्स देखे, कविताएं देखी, तो वो बोले कि हम तुम्हारे बेटा कार्टून भी छापेंगे और आज से तुम बच्चों के स्तंभ के संपादक भी हुए.
0: अरे क्या
1: तो
0: बात है.
1: मैंने पूछा कि संपादक क्या होता है?
0: तो साल का बच्चा.
1: हाँ, वही
0: यही होगा.
1: तो उन्होंने यही कहा कि जो रचनाएं आती हैं बॉक्स में इकट्ठी होती हैं, कविताएं, कहानियां, चुटकुले.
0: हाँ हाँ.
1: उनको तुम्हें देखना है और उन्हें बहुत ज्यादा, अगर वो लंबे चौड़े हों तो उन्हें थोड़ा छोटा करना है, उनकी अशुद्धियां दूर करना है. और सामयिकता के हिसाब से कि जैसे दिवाली आ रही, तो ऐसा नहीं हो कि तुम होली की रचना रिलीज कर दो. तो वो करना है और कार्टून्स भी हम तुम्हारे छापेंगे. इस तरह सिलसिला शुरू हुआ. और पहला कार्टून जो था, चूंकि इन दिनों करवा चौथ आ रही थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊं. तो मैंने बनाया कि एक व्यक्ति है, वो घर में बैठा अखबार पढ़ रहा है, तो उस व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं है.
0: अच्छा.
1: और उनकी जो पत्नी देवी है वो खिड़की के बाहर खड़ी देख रही है, हाथ में पूजा की थाली है और वो चंद्रमा ढूंढ रही है, चांद की तरह. तो छोटा बच्चा एक आया और वो आके कहता है कि माँ माँ आप बाहर चांद कहाँ ढूंढ रही हो, वो तो हमारे घर में मौजूद है. तो उसका इशारा पिता के सिर की तरफ
0: जी,
1: था
0: जी.
1: ये इस तरह से कार्टून पहला बना था
0: जी. बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि आपका पहला कार्टून इस रूप में आया. जब बात पहले कार्टून की चली है तो इस कार्यक्रम का पहला गीत भी आपकी पसंद का सुन लेते हैं हम
1: जी.
0: बताइए
1: पहला गीत तकदीर फिल्म का, वो मुझे बहुत पसंद है. आइए बाहर को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें.
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है. तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत.

0: तो देवेंद्र जी, आपने बताया कि 14 साल की उम्र में आप एक अखबार में संपादक के रूप में भी लग गए, बाल संपादक के रूप में, और आपने काम करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे इस कला को आपने विकसित किया होगा जब आप एक बाल संपादक बन गए, बहुत सारी चीजों के संपर्क में आए, खुद भी आपने कार्टून बनाना लगातार बनाए रखा, तो इस कला शैली को विकसित होने में आपकी नजर में आपको कितना समय लगा?
1: विकसित होने में इसे समय की अवधि में इसलिए नहीं मान सकते कि ये विकास होना एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है हमेशा
0: जी।
1: हम नई चीजों को अपने में समाहित करते हैं कला में, और वो फिर हर दिन एक नई ताजगी, नयापन उसमें महसूस होता है। और वैसे शुरू के कुछ शायद एक आध साल ऐसे लगे होंगे जब काम करते करते लगा कि ये मेरी शैली हो सकती है, मैं इस तरह ही कार्टून बनाऊं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसमें सब बात आ जाती है, प्रमुखता से किन पात्रों को उभारना है, बैकग्राउंड में क्या रखना है। और फिर मैं एक मेरी एक हमेशा कोशिश रहती है कि कार्टून का जो कोना कोना है उसमें से हास्य झलके, जाने कि एक गमला रखा है या कहीं ऊपर एक झाड़ फानूस भी है या कोने में एक पिल्ला बैठा हुआ है।
0: तो ये सब चीजें पात्र बहुत कुछ कहते हैं
1: जी। हाँ,
0: जब हम इन कार्टून्स पर नजर डालते हैं तो मतलब वो जो पिल्ला बैठा हुआ है वो भी कुछ कह रहा ही होता है।
1: हाँ, कहता है कई बार उससे जो संवाद, मान लो हम किसी बड़े से नहीं कहलवा सकते है ना, और उसको इनडायरेक्ट वे में कहलवाना है, तो कहीं पिल्ला बोल देता है, कहीं ऊपर से उड़ती हुई चिड़िया आती है वो बोल देती है।
0: बिल्कुल सही कहा
1: जी।
0: तो आप जब एक खाली कैनवास या कागज आपके सामने होता है तो हर दिन की अगर हम बात करें तो पहला विचार क्या आता है आपको?
1: कागज और कैनवास जब खाली होता है, पहले तो विचार आता है, उसके बाद कागज आता है। और वैसे भी खाली कागज और कैनवास सहन नहीं होता, ऐसा लगता है कि अपने को बुला रहा है और कह रहा है कि आओ मुझ पर, आप कुछ ना कुछ बनाओ और रंग से आप भर दो मुझे, ताकि मैं पाठकों के अंदर में जो है रंग उसकी सृष्टि करूं, बिखेरूं रंग को।
0: जी जी जी। तो हर दिन आप एक कार्टून बना लेते हैं या हर दिन ये रचना होती है?
1: जी हाँ, हर दिन, क्योंकि ये समय के साथ चलना होता है। जैसे अगर आप अखबार में हैं, दैनिक अखबार में हैं, तो रोज आपको बनाना है, और अगर आप पत्रिका में हैं, पाक्षिक पत्रिका में, तो इंसान थोड़ा सा सुस्त सा हो जाता है कि आराम से आज नहीं तो अपन फिर बना दें, 15 दिन में तो निकलनी है।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा कुछ मिजाज इस तरह से डेवलप हुआ कि, और स्पीड भी ऐसी बनी कि खूब सारे कार्टून एक दिन में। तो प्रदेश का सबसे बड़ा जो अखबार है उसमें जब मेरी एंट्री हुई तो वहां पर यही था कि जब शुरू शुरू में मैं गया तो एक पहला कार्टून बना कर दिया, संपादक जी खुश हुए कि हाँ इसको ले लेंगे। थोड़ी देर में हम दूसरा बना के फिर ले गए, वो बोले ठीक है इसे फलां पेज पे ले लेंगे। फिर पहुंच गए तो उन्होंने हंस के कहा, श्रीमान जिस गति से आप बना रहे हैं उस गति से हम नहीं छाप पाएंगे। तो
0: अच्छा।
1: आप थोड़ा आहिस्ता। तो मैंने कहा
0: मतलब आप इतनी तेजी से, इतनी रफ्तार के साथ एक दिन में कार्टून?
1: जी हाँ जी हाँ, मेरा 17 कार्टून्स एक दिन में, इसका मतलब है हाईएस्ट जो
0: रिकॉर्ड।
1: हाँ,
0: 17 कार्टून आप एक दिन में
1: बना, एक दिन में बनाने का रिकॉर्ड है। मतलब कि वो भी बस तब हुआ था कि उस अखबार विशेष का जब दीपावली अंक आ रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें अब जल्दी से अंक निकालना है क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। तो कल से शुरुआत, मैंने कहा आज से भी कर सकते हैं। तो उस दिन के जो अगले पन्ने का कार्टून, फिर एक जो साप्ताहिक मैडम मोहिनी आती थी, बड़ा पॉपुलर कार्टून कॉलम है वो, तो उसका स्ट्रिप उसकी तैयार की, फिर उसके बाद में अंतिम पत्र के साथ का कार्टून, फिर उसके बाद में राशि के 12 कार्टून सिंह राशि का हमने बना दिया। चपरासी आया, झट लेके अंदर पहुंचा, वो मशीन पे जा रहा है, तब तक हमने कन्या राशि का बना दिया। इस तरह से ये सब कार्टून।
0: बहुत सुंदर। तो आपके विषय क्या रहते हैं इन कार्टून्स के, हर बार क्या विषय चुनते हैं आप?
1: विषय वही जो हमारे आसपास बिखरे होते हैं रोजाना के, जैसे

0: खबरें अखबार की या जो बाहर की जो हम घटनाएं देखते हैं, हाँ सामाजिक विषय होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, वही सब सारे विषय होते हैं, और बस वो पाठक को गुदगुदा दें, बस कोशिश यही रहती है कि बहुत ज्यादा दुरूह और जटिल ना हो,
1: हाँ।
0: और इतने भी सिंपलिसिटी उनमें ऐसे भी ना हो कि सड़क छाप नजर आए,
1: जी
0: वो चीज है,
1: मतलब चुटकुला भी ना लगे,
0: हाँ,
1: आप किसी
0: भी
1: जोक को सुना रहे हैं ना, ऐसा भी ना लगना कि जोक्स नहीं है, क्योंकि एक बारीक अंतर है जोक्स और कार्टून के मध्य,
0: कार्टून्स में बिल्कुल,
1: कार्टून कला क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा देवेंद्र जी, आपने कहा कि आप एक दिन में 17 कार्टून्स बना लेते हैं या लगातार बहुत तेजी के साथ बनाते हैं, कभी ऐसा आया कि दिमाग खराब है या गुस्सा है या परेशान है और कोई विचार सूझ ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति कभी आई आपके सामने?
0: ऐसी आ सकती थी, लेकिन पता नहीं ईश्वर ने मुझे शाप देकर भेजा है, यानी कि घर में आप समझ लीजिए कि बुरी से बुरी दुर्घटना ऐसी कोई हुई हो,
1: हाँ।
0: जबकि हमारे यहाँ पर नानी हमारी नहीं रही, उस दौर में भी और कोई हो तो 13 दिन छुट्टी लेके बैठ जाए, लेकिन हम दूसरे दिन गए और फिर चूंकि अभी हंसी वाला मामला है तो पता नहीं कहां से कौन सी बत्ती जलती है और आप वही चीज बनाकर आते हैं और लोगों को मालूम भी नहीं रहता कि इनके परिवार में क्या हुआ है, जाके अपना काम करते हैं हंसी खुशी, क्योंकि वो काम है ईश्वर ने सौंपा है तो करना है, वो बात है। और
1: बहुत बड़ी बात, यानी आप पूरी तरह से समर्पित हैं अपनी कला के प्रति।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो इस कार्टून की अगर हम बात करें, आज मानव जीवन में क्या उपयोगिता है जब डिजिटल युग आ गया है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, दुनिया भर की समाचार, दुनिया भर की खबरें और अनाप शनाप भरा हुआ है, जहाँ ऐसे में एक छोटा सा कार्टून जो एक अखबार के कोने में, पत्रिका के कोने में कहीं होता है बैठा हुआ, उसकी क्या उपयोगिता लगती है आपको?
0: कार्टून की उपयोगिता मंदाकिनी जी शुरू से बहुत रही है और आज के समय में तो उपयोगिता इसकी काफी, क्योंकि आज हर इंसान जिसे हम देखें वो अपने तनाव में, समस्याओं में घिरा हुआ है, उसको टेंशन है, ऐसे में अगर वो किसी कार्टून के टच में आता है तो उसके चेहरे पर जो एक हल्की सी मुस्कान आती है वो रिलैक्स हो जाता है, तो ये उस कार्टून की सफलता और उपयोगिता है, क्योंकि अगर वो हंस देता है तो उससे मतलब राहत तो मिलती है उसको और अपने टेंशन से लड़ने के लिए, समस्याओं से लड़ने के लिए उसको एक नई शक्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, वो कार्टून की ही देन होती है।
1: और आज भी इसकी उपयोगिता
0: इसकी बिल्कुल बिल्कुल बनी हुई, क्योंकि हम देखते हैं ना कि अगर हम हंस दिए तो माहौल कितना हल्का फुल्का हो जाता है, है ना, और नहीं हंसेंगे तो बोझिल हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज ये कि हंसने की जो देन है, हास्य का जो उपहार है, ईश्वर ने मनुष्य को ही दिया है। हमने कभी वॉल्ट डिज्नी के कार्टून के अलावा किसी कुत्ते को हंसते हुए नहीं देखा है या किसी चूहे को हंसते नहीं देखा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब हास्य की बात चली है तो क्या कार्टून में हास्य अधिक होना चाहिए या व्यंग्य?
0: हाँ ये प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है और अक्सर लोग इस अनुपात को नहीं कायम रख पाते हैं, लेकिन मैंने इसको एक अनुपात मैंने अपना तय कर रहा है कि उसमें व्यंग्य भी होना चाहिए और उसमें हास्य भी होना चाहिए, ताकि सभी को कुछ ना कुछ मसाला मिलता रहे। और फिर अपन कहते हैं ना कि कोई कड़वी बात भी हो तो उसको मीठी चाशनी में अगर लपेट कर प्रस्तुत करते हैं तो उसका असर अधिक होता है और उसका आनंद भी रहता है, तो कार्टून्स में भी यही किया जाता है। जैसे कि कोई समस्या है मान लीजिए, उसको अगर व्यंग के माध्यम से हम कहें तो वो कड़वा भी हो सकता है, वो क्रूर भी हो सकता है और उस शुष्क भी होता है वो, लेकिन अगर उसमें हास्य हमने डाला है तो फिर वो सरस हो जाएगा और बात रहेगी वही, लेकिन उसका कहने का एक तरीका बदल जाएगा, तो लोग हंसते हंसते उस चीज को ग्रहण करेंगे और सिस्टम सुधारने के लिए हमने जो सोचा है वो बात जहां जानी है वो पहुंच जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बड़ा गुदगुदाते हैं ये कार्टून,
0: हाँ,
1: तो एक दो अपने कार्टून्स के बारे में बताइए आप कि जहां आपको लगा होगी मैंने इसमें हास्य और व्यंग का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया है।
0: जी हाँ, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये जो अक्सर देखा भी गया है कि किसी को कुर्सी मिल गई, मान लीजिए नेता को मिल गई, तो उस कुर्सी से उसको मोह हो जाता है, उसे सत्ता का मोह भी हम कहते हैं, प्रतीक में है कुर्सी, तो उस कुर्सी को मुश्किल से ही जब वो हासिल होती है तो छोड़ता भी इंसान मुश्किल से। इस पर मैंने एक कार्टून बनाया था कि एक नेता महोदय है वो अपनी कुर्सी पर कसकर बैठे हुए हैं, उसके हैंडल वगैरह पकड़े हुए, इतने उनका नौकर आया कुर्सी झाड़ने के लिए कपड़ा लेकर, तो वो कह रहा है कि मालिक आप थोड़ा सा हट जाएं तो मैं कुर्सी को झाड़ लूं।
1: जी
0: तो नेताजी ने क्या किया, ये तीन फ्रेम्स में कार्टून, दूसरे फ्रेम में वो ऊपर उठ गए, कुर्सी के हत्थे उन्होंने कस के पकड़ लिए हैंडल और पूरे ऊपर उठ गए हैं और कह रहे हैं कि लो भाई तुम

0: कुर्सी झाड़ लो, पर इसको छोड़ूंगा तो मैं बिल्कुल नहीं। तो ये एक वृत्ति की तरह हमने संकेत भी दिया और हंसी हंसी में वो बात भी हो गई।
1: कह दी। तो चलिए अभी एक गीत आपकी पसंद का हम सुन लेते हैं।
0: हाँ, सागर फिल्म का गीत है जिसे एसडी बालासुब्रमण्यम ने गाया है, सच मेरे यार है बस वही प्यार है। हाँ।
1: बहुत सुंदर और गहरा गीत है, एक दार्शनिक गीत है। कमल हासन साहब पर्दे पर दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल
1: बहुत सुंदर।
2: सच

0: तो देवेंद्र जी, आपके कार्टून्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और बहुत ही शानदार कार्टून्स है जिन्हें हम जब जब पढ़ते रहे हैं तो लगता है कि गुदगुदाहट होती ही है। कार्टून्स बनाते समय एक कार्टूनिस्ट को कैसा माहौल चाहिए होता है, मतलब वो किस तरह का माहौल पसंद करता है?
1: जैसे हर रचनाकार की पहली शर्त होती है रचना करने के लिए कि एकांत हो, शांति हो, वही कार्टून के वक्त भी बनाते वक्त भी मुझे यही लगता है कि वहाँ शोरगुल ना हो थोड़ा, ताकि कंसंट्रेशन हो सके। और उसके लिए बस मैंने सोचा हमेशा शांति तो महसूस नहीं होती, तो वहीं फिर आपकी विविध भारती काम आती है।
0: अच्छा, कैसे?
1: रेडियो एक छोटा सा ट्रांजिस्टर है मेरे पास में, वो बजता रहता है और उसमें जो संगीत की लहरियां निकलती हैं बस उसी परिधि में हमारा ध्यान होता है और बस आराम से कार्टून बन जाता है। और यही विधि जब मैं पढ़ाई करता था तब भी यही सब चलता था कि धीमे धीमे रेडियो बज रहा है और आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने पाठ याद कर रहे हैं। तो कार्टून के लिए भी एक तो संगीत हल्का हल्का मध्यम संगीत हो और मंदाकिनी जी की आवाज हो
0: और शुक्रिया,
1: और साथ में अगर चाय का गर्म प्याला मिल जाए,
0: अरे वाह,
1: तो ये बहुत अच्छी बात है।
0: आपने बहुत ही क्लासिक तरीके से बात समझाई है। वाकई ये एक माहौल एक कलाकार को चाहिए होता
1: जी,
0: है,
1: जी,
0: चाहे
1: जी,
0: वो लेखक है, चाहे कार्टूनिस्ट है, क्या वो सिंगर है, कोई भी कलाकार,
1: वो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक छोटी सी जगह में बैठ के अपना काम बस हो जाता है कंप्लीट बस।
0: तो क्या कार्टूनिस्ट के जरिए जब आप लोगों को हंसाते हैं तो आपको खुद भी क्या खुश मिजाज होना पड़ता है कार्टूनिस्ट को?
1: बिल्कुल होना पड़ता है, उर्वर भूमि जो होगी उसी में तो फिर अच्छा पौधा खिलेगा, फूल खिलेगा। तो हंसना हंसाना तो बहुत जरूरी है, और बल्कि मुझे लगता है कि जब आइडिया हमने जब चित्रित कर लिया या आइडिया के टच में आए तो पहले हमारा खुश होना बहुत जरूरी है। अगर हमें लगता है कि हाँ हम खुल के हंस दिए, हमें रोम रोम पुलकित हो रहा है, तब लगता है कि ये अब वेल टेस्टेड हो गया और ये जाकर ये पाठकों को जरूर ये गुदगुदाएगा और बात जो हमारी कहना है वहां तक पहुंचेगी।
0: सबसे तो बड़ी बात,
1: हाँ ये बहुत जरूरी
0: मतलब
1: है,
0: दिमाग की खिड़कियां खुली होनी चाहिए,
1: खुली होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें ये नाप तोल के मुस्कान वाला काम नहीं चलता है।
0: सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप किसी विधा पे काम करते हैं तो पहले खुद को उस विधा से जोड़ने के लिए वैसा बनना पड़ता है।
1: वैसा बनना पड़ता है, बिल्कुल जरूरी है।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो श्रोता इस समय आपको सुन रही है उनमें बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं कि वो कार्टूनिस्ट हो, तो वो भी इस बात को ध्यान रखेंगे कि एक कार्टूनिस्ट को खुद भी वैसा मिजाज रखना पड़ता है पहले। तो अपने कार्टून में जान फूंकने के लिए देवेंद्र जी आप किन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं?
1: सबसे पहला तत्व तो है आइडिया, उसके बाद में कागज पर उसे उतारते हैं, वो पेंसिल की मदद से, पेंसिल पेन ब्रश ये सब चीजें होती हैं, और उसके बाद में जब कार्टून मुकम्मल हो जाता है फिर उसे कंप्यूटर में ले जाकर वो ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्टून ऐसे तैयार होता है, बस ये बेसिक तो यही है। बाकी जो कला जो है अगर देखा जाए तो कला हाथ में होती है, किसी टूल्स में नहीं होती है, मतलब हर वक्त नहीं होते हैं जरूरी, लेकिन जब आप अखबार के लिए काम कर रहे हैं, मैगजीन्स के लिए जब कर रहे हैं उस वक्त में, जो मैंने आपको बताया शुरुआत में कि पेंसिल से शुरू होगी यात्रा, ये कंप्यूटर पर खत्म होती है, ये चीज है।
0: तो आप तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हर तरह के विषयों पर कार्टून बनाते हैं, क्या कार्टूनों की कोई सीमा रेखा होती है जिसके अंदर ही एक कार्टूनिस्ट को काम करना होता है?
1: बिल्कुल होती है, और सीमा
0: थोड़ा हमें बताइए किस तरह की ये लाइन होती है, क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं।
1: हाँ, ये सीमा रेखा दरअसल वही होती है जो एक सभ्य मनुष्य को भी पालन करना चाहिए, वही कार्टून्स में भी है कि आप एक तो नैतिकता का ध्यान रखें, मानवता का रखें, और जो हम कहते हैं कि सब बराबर हैं, सारे जीव जंतु सारे इंसान बराबर हैं, उन्हीं चीजों को लेकर मेंटेन करते हुए, और किसी पर हम मान लीजिए कि कटाक्ष भी करें तो हल्का फुल्का करें हंसी के साथ, लेकिन ऐसा ना हो कि वो मामला तूल पकड़ ले। और हम कहते हैं ना कि जैसे हास परिहास वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी का उपहास करना वो चीज बहुत बुरी है, तो कार्टून में इन चीजों से बचा जाता है, तो बचना चाहिए।
0: ये एक सीमा रेखा है।
1: हाँ, ये सीमा रेखा है, किसी का असम्मान भी ना हो किसी का, ये चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना है। और कार्टून में भाषा, किस तरह की भाषा आप ले रहे हैं वो भी देखना है कि कोई बहुत ज्यादा क्लिष्ट ना हो और बहुत चलता हो लैंग्वेज भी ना हो।

0: और कार्टून का जो कैप्शन होता है वो थोड़ा छोटा हो, बहुत ज्यादा विस्तार भी उसमें ना हो, ये सब चीजें हैं। एक चीज इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि तरह तरह की जो प्रतिक्रियाएं मिलती रही, शुरू में बहुत मिली, अच्छी ज्यादा मिली, जिनसे कि इंसान प्रोत्साहित होता है और आगे बढ़ता है। आपने बालकवि बैरागी जी का नाम सुना होगा,
1: जी
0: है ना,
1: जी जी
0: सुप्रसिद्ध गीतकार
1: बिल्कुल।
0: और सांसद।
1: अरे
0: तो बालकवि जी ने मेरा एक कार्टून देखा था जब मैंने बनाया था मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर तत्कालीन, तो उस कार्टून को देखकर उन्होंने, वो कार्टून अप्रिशिएट भी बहुत हुआ था। वो बालकवि जी का मुझे पत्र मिला,
1: जी
0: प्रिय देवेंद्र तुम बहुत दुष्ट हो,
1: अच्छा
0: तुम्हें पता नहीं तुम्हारा यह कार्टून लोगों ने फ्रेम करवा कर रख रखा है और किसी भी कलाकार के खाते में यह बहुत बड़ा जन प्रतिदान है,
1: अरे
0: मेरी तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद।
1: क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। वो तो बाल कवि बैरागी साहब, बैरागी साहब आपको ये बात कह रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और देखिए उनके कहने में भी कितना अपनत्व है और गहराई है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है।
1: बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि एक कार्टून जैसी छोटी सी विधा है, बहुत गहरी विधा है, उसे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहित्यकार कलाकार भी
0: देखते
1: पढ़ते
0: हैं,
1: देखते सुनते हैं
0: बिल्कुल।
1: और सराहते हैं।
0: सही बात है।
1: चलिए आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
0: बस यहाँ बालकवि बैरागी जी का लिखा हुआ रेशमा और शेरा फिल्म का गीत कैसा रहेगा?
1: बिल्कुल अच्छा रहेगा।
0: तू चंदा मैं
1: चांदनी। आइए सुनते हैं बालकवि बैरागी का लिखा ये बहुत ही खूबसूरत गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: तो देवेंद्र जी, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना अभी बैरागी साहब का लिखा हुआ। तो आप चूंकि इतने कार्टून्स बना चुके हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि आपकी पसंद का कोई कार्टून जिसके बारे में आप बताना चाहें जो आपको बेहद पसंद हो।
1: मेरी पसंद के तो बहुत सारे कार्टून्स हैं। अभी मैनेजमेंट पर बनाया

0: होता है कि बेटा मेरे पैर दबा दो, बहुत दर्द कर रहे हैं मेरे पैर। तो कहता दादाजी मैं भी आता हूँ। और फिर वो जब लौटा तो उसके हाथ में आरी थी काटने वाली, आरी लेके आया वो। तो दादाजी सहम के बैठ गए पैर सिकोड़ के। आरी क्यों? बोले दादाजी हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते हैं किसी भी काम को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, उसके बाद उस काम को पूरा करो।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
0: और एक कार्टून और भी ध्यान आ रहा है कि जैसे कार्टून कई बार ये घटनाओं पर होते हैं, खबरों पे होते हैं, ट्रेंड्स पे होते हैं, मनोविज्ञान पे भी कार्टून बनाने मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि किसी किशोरी का मनोविज्ञान, ये मैंने ऑब्जर्व किया था तो उस पर कार्टून मैंने बनाया जो महिलाओं के स्तंभ में छपा था
1: जी।
0: कि एक टीनेजर कन्या है, वो अपने घर में बिस्तर पर औंधी लेटी हुई कुछ कविताएं वगैरह लिख रही है
1: जी।
0: पास में गुलाब के फूल भी हैं, डायरी है ऐसा, और वो अपने सपनों में खोई हुई है। और कुछ पंक्तियां भी हैं जो हम बाद में देखेंगे क्या वो कह रही है। और पंक्ति ये है कि सपनों में बस गई है एक मादक गंध, सपनों में बस गई है एक मादक गंध, मानो दूध उफन गया हो कहीं। और उस कार्टून में पीछे बताया गया है कि गैस पे वास्तव में दूध चढ़ा हुआ है और उफन के और बह रहा है और पूरे फर्श पे फैला है। और इसमें मजा और कि दरवाजा खुला और उनकी माता जी सब्जी वगैरह लेके आ रही हैं और उन्होंने दूध देखा तो अंगारा हो गई वो।
1: जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कितनी गहरी बात आपने कही कि एक किशोरी मन की क्या जो है सोच होती है, मनोविज्ञान क्या होता है किशोरपन का, वो आपने इसमें बताया, बहुत सुंदर। एक साधारण स्केच से लेकर अंतिम प्रकाशित कार्टून तक की आपकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहती है?
0: उस प्रक्रिया में सबसे पहले आता है विचार। उस विचार में ध्यान ये रखते हैं क्योंकि कई बार विचार ऐसा भी आता है, मान लीजिए उसको पहले मैं कहा करता था साथियों में कि मुझे शेर जैसा विचार आता है और उसको मैं पीट पीट कर बकरी जैसा बनाकर पेश करता हूं। तो ये जो बकरी जैसा बनाना जो है ये दरअसल एक सामंजस्य वाली चीज है
1: जी।
0: और ताकि जिससे सब लोग खुश रहें और उतना तीखापन महसूस ना करें कि बात बिगड़ जाए, तो उस तरह से कार्टून बनता है। तो पहले विचार आया और विचार के बाद में जैसे आर के लक्ष्मण साहब ने भी कहा था कि पहला विचार जो आता है उसमें मत आप उलझ जाओ, वो आपको लुभाता और ललचाता है, इसलिए उससे आप और आगे चलो, सेकेंड थॉट, फाइनल थॉट, ऐसे करके, तो उसमें उसका रिफाइनमेंट होता है, आगे वो चीजें चलती हैं। तो ये प्रक्रिया मेरी भी है कि पहला विचार आया उसको अलग रखा, फिर और उस पर सोच रहे हैं, अलग अलग कोण से सोच रहे हैं, अलग अलग उसमें सिचुएशंस भी बनती हैं, और फिर जब रिफाइन होकर वो आता है तो अच्छा लगता है, देख के मन खुद कहता है कि नहीं ये चीज बढ़िया है और ये आगे बढ़ना चाहिए।
1: जी बहुत सुंदर, बिल्कुल यही काम करने का भी तरीका है कि आप अगर विचार पे अटक कर रह गए
0: पहले
1: तो वहीं खड़े
0: हाँ,
1: रह जाते
0: बस बस बस।
1: तो आज के डिजिटल युग की हम बात कर रहे हैं और इंस्टाग्राम जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो कार्टूनिस्ट के काम करने का क्या तरीका बदला है?
0: तरीका तो नहीं बदला है, ये है कि
1: विचार बदला होगा,
0: विचार भी बदला है। और मैं विचारों में भी आज जो हम कहते हैं ना एक गरिमा उतनी नहीं, आजकल जो हो रहा है वो गरिमा उतनी नहीं, उसको मेंटेन करके चलना चाहिए, क्योंकि भाषा की भी खूबसूरती एक होती है कार्टून के अंदर, वो है। और पात्रों की जो विविधता जो जैसे हम चुनते हैं कि हर बार रोज एक ही एक तरह का आप बना रहे हैं, सूटेड बूटेड ये वो, उसके बजाय आप लोक जीवन में उतरे, बाहर देखें सड़क पे कितने तरह के पात्र दिखाई देते हैं, तो कभी बात उनसे भी कहलवाएं, ये होता है अलग अलग पात्र अलग अलग बात कह रहा है, उसका मजा आता है।
1: तो लोक जीवन से जुड़ा कोई कार्टून आपको याद हो आपका बनाया हुआ?
0: लोक जीवन से जुड़ा मेरा कार्टून एक ध्यान आ रहा है मुझे, वो भी थोड़ा इस तरह का कि जैसे जब वीमेंस लिब का जो चला था शुरुआती जोर था, तो उसमें मैंने बताया कि एक खेत में किसान बैठा हुआ है, फुर्सत के लम्हों में हल चला के बैठा है, और पास में उसकी जो पत्नी है वो पोटली में रोटी वगैरह लेके आई है और प्याज और है ना मिर्ची ये सब अचार, तो वो खाना खा रहा है और वो पंखा झल रही है उसको बैठे हुए, है ना, कितना सुंदर दृश्य। तो इसमें तो एक तो आपने पूरा बैकग्राउंड दिखाया, झोपड़ी दिखाई, खेत दिखाया, हल दिखाया, उसका स्त्री और पुरुष का पहनावा, तो इसमें लोक जीवन की लोक पहनावे की झलक मिली। अब उसके बाद उस सड़क से दो आधुनिकाएं जा रही हैं कार से, तो उनने कार रोकी और ये दृश्य देख के वो कह रही हैं कि ये कितनी अभागी औरत है, ये मतलब नारी स्वातंत्र्य के विचार से एकदम अनजान है, चलो इसे हम चल के उसकी दास्ता से मुक्त कराएं, पुरुष की दास्ता से। तो ये ऐसी चीजें हैं,
1: बहुत बड़ा व्यंग्य, बिल्कुल सही।

0: स्थापने की दो स्त्रियों की मनोदशा आपने बताई कि जो ग्रामीण परिवेश की स्त्री जो सुख अनुभव कर रही है, आधुनिक परिवेश की स्त्री उस सुख को नहीं जान पा रही है और उसको दास्ता बता रही है।
1: हाँ, तो ये जो विसंगति है बस उसको ये उसमें दिखाने की कोशिश है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर देवेंद्र जी, बहुत सुंदर। तो अगर मैं देवेंद्र जी से ये पूछूं कि इतने कार्टून आपने बना लिए, लगभग कितने कार्टून बना लिए होंगे?
1: ये 60,000 से ऊपर हो चुके हैं। ये
0: 60,000 से ऊपर कार्टून आप बना चुके हैं अब
1: तक? जी जी जी।
0: और ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप रहे हैं या इन पर आपने किताब भी लिख ली है?
1: ये किताब में तो ये नहीं आ सकते, अभी मेरे तो करीब 6-7 व्यंग संकलन ही निकले हैं। बाकी ये है कि इनके ऊपर, हाँ आपको ये बता दूं, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो भी यूएसए का वो मिला है।
0: अरे वाह।
1: हाँ, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिश्ड कार्टून्स उसके ऊपर।
0: अच्छा, तो 60,000 कार्टून आपने आज तक बना लिए हैं।
1: जी,
0: इतने विचार, यानी 60,000 विचार तो आपको आ ही गए, और कितने विचार और आने हैं।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: बहुत सुंदर, अद्भुत है ये बात। मतलब 60,000 कार्टून कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
1: जी हाँ।
0: है ना, 1,000, 2,000, 5,000, 6,000 के आंकड़े तो हम सुनते ही हैं 10,000 तक के, लेकिन 60,000 कार्टून बनाए रखना और उनको मेंटेन करना बिना किसी विवाद के,
1: हाँ जी,
0: ये कार्टूनिस्ट की बहुत बड़ी सफलता है। चलिए आपसे और बातचीत करने वाले हैं।
1: जी,
0: एक गीत सुन लेते हैं। गीत बताइए।
1: न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, फिल्म का नाम है बातों बातों में।
0: बहुत सुंदर गीत है ये।
1: हाँ, अनिल कुमार और आशा भोसले जी की आवाज है।
0: तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद।

0: देवेंद्र जी, जैसा कि मैं ये जानना चाह रही थी, पहले हम बचपन में चंपक और लोटपोट जैसी पत्रिकाएं पढ़ा करते थे और उसमें एक सीरीज चला करती थी कार्टून की, तो क्या ऐसी कोई सीरीज चलाने का आपने भी काम किया है कि एक लंबी सीरीज चल रही है किसी कार्टून पर, किसी विषय पर?
1: जी हाँ, मैडम मोहिनी नाम से एक सीरीज मैंने बनाई थी, वो 600 के लगभग उसकी आवृत्तियां छपी हैं, तो वो बहुत पॉपुलर था, वो परिवारों में, महिलाओं में, सभी लोग उसे पढ़ते थे।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैडम मोहिनी एक बताई गई है, एक तरुणी, तो वो डबल डेकर स्ट्रिप होती है, जो एक स्ट्रिप ऊपर एक उसके नीचे स्ट्रिप, उस तरह से। तो उसके कुछ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैडम मोहिनी बैठी हुई है और वो अखबार पढ़ रही हैं, इतने में उनका भतीजा आता है कि मौसी मौसी मुझे जूते पहनना है, जल के जूते पहना दो। तो बोलती है कि नहीं नहीं जूते क्या पहनना, अब 4 दिन की तो ये बारिश है और ये इस तरह बरसाती जूते तुम बोल रहे हो, तो रहने दो। फिर वो कहता है कि अच्छा तो मुझे एक नया बस्ता ही दिला दो स्कूल जाने के लिए। तो बोले अरे 4 दिन का तो तुम्हारा सेशन है, उसमें क्या नया बस्ता लोगे? तो बोले आप ये क्या अखबार में क्या पढ़ रही हो? बोले अरे झपट मत, मैं तेरे लिए मौसा जी ढूंढ रही हूँ। तो अखबार लेके भाग जाता है और कहता है कि 4 दिन का तो जीवन है, इसमें जीवन साथी क्या ढूंढना।
0: बहुत अच्छे
1: ऐसी इस तरह से
0: ये सीरीज लंबी चली थी।
1: हर हफ्ते
0: लोगों ने काफी पसंद किया, खासतौर से महिलाओं ने।
1: जी।
0: तो क्या महिलाओं के खत आपके पास आए, महिलाओं के फोन आपके पास आए, कोई महिला आपसे मिलने आई कि देवेंद्र जी आपने इतनी खूबसूरत ये सीरीज चलाई है और इसे पढ़ के हम तो गुदगुदा जाते हैं?
1: हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल, और उसमें अखबार में जो प्रतिक्रियाओं का एक कॉलम था उसमें बहुत प्रतिक्रियाएं आती थी, उसमें वो लिखते थे कि आज देवेंद्र जी ने राह बताई, ये किया, वो किया, अपनी अपनी टिप्पणियां सब
0: बिल्कुल
1: करते
0: बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जब हम अखबार पढ़ते हैं या आज भी पढ़ते हैं या पढ़ते थे, तो वो कार्टून जरूर तलाशते थे सबसे पहले कि अखबार में क्या आया है, ये एक निगाह रहती थी कि आज कौन सा कार्टून आया है किसी का भी।
1: हाँ।
0: तो ये निगाह हमेशा रही। तो आपके परिवार में जो और अन्य लोग हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, क्या उनका भी कभी विरोध हुआ कि क्या दिन भर आप कार्टून बनाते रहते हैं और हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, आप दिन में इतने अपने रिकॉर्ड तोड़ कार्टून बना लिए हैं? तो ऐसा कभी घर पर कोई कार्टून बनाया आपने पति पत्नी विवाद पर या बच्चों के विवाद पर?
1: उन लोगों से मतलब मतभेद का ऐसा अवसर आया नहीं, क्योंकि मैंने ये अखबार में जैसे जॉब रहता है तो उतनी देर के लिए आप बाहर गए, वहाँ कार्टून आप बना के चले आए, और फिर उस चीज को घर में मतलब फिर मैं बताता भी नहीं, कोई पूछे भी कि आप देवेंद्र हैं तो मैं कई बार सोचना पड़ जाता है कि क्या मैं हूँ क्या। और फिर जैसे कि अपन लोग बात कर रहे थे कि सबका साथ और सबको लेके चलना, ये जो चीज होती है, तो बच्चों के साथ आप गए मान लीजिए स्कूल लेकर जा रहे हैं, उन्हें घुमा रहे हैं, तो उसमें से भी आपके लिए रॉ मटेरियल इकट्ठा होता है। पत्नी देवी को लेकर आप स्कूटर पे गए सब्जी खरीदने, तो कुछ तो भाव ताव होना, ये सब चीजें तो वहां भी आप देखते हैं कुछ मिलता है मैटर। जैसे मैंने कार्टून बनाया था कि जैसे दल बदल वगैरह ज्यादा होता है ना, तो उसमें मैंने बनाया था कि एक सब्जी वाली बैठी हुई है और तो जो ग्राहक है वो उससे कह रहा है कि भाई आपके जो आलू हैं या विधायक हैं वो देखो लुढ़क कर उधर टमाटरों में मिल रहे हैं।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: ऐसी चीजें बस ये रोजमर्रा की जो होती हैं उसे
0: बिल्कुल। यानी कि कार्टूनिस्ट को बहुत ही पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है और हर समय जागरूक रहना होता है कि कब कहां से क्या मैटर मिल सकता है और कहाँ कैसा कार्टून बनाया जा सकता है। तो कार्टून की दुनिया में जो आना चाहते हैं, कार्टूनिंग की दुनिया में कदम रखने वाले जो नए कलाकार हैं, युवा कलाकार हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उन्हें बस मेरा यही संदेश है कि इस विधा को आप भले ही प्रोफेशनली ना अपनाएं, लेकिन शौकिया अगर आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट है तो उसको आप लेकर चलें, और क्योंकि ये विधा सबसे पहले आपको खुश रखेगी, फिर आपके सराउंडिंग को खुश रखेगी, इसलिए आप खुश रहने का एक बहुत अच्छा है नुस्खा है, कैप्सूल है, तो इसको लेके आप साथ में चलें, और इस विधा को साइड में भी रख सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत हमेशा है, क्योंकि हंसी की जरूरत हमेशा है, अच्छे संदेशों की जरूरत हमेशा रहेगी।
0: बिल्कुल सही कहा देवेंद्र जी, आपके आदर्श कौन है, आपने इतना लंबा समय इस दुनिया में बिताया है कार्टून की दुनिया में, आपके अपने आदर्श कौन रहे, किन से प्रभावित होकर आप आगे बढ़ते रहे?
1: मेरे आदर्श एक तो

0: जीवन में सबसे पहले पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, मेरे पिताजी जो हैं,
1: जी
0: और उन्हें मैंने कार्टूनों में बनाया भी है
1: अच्छा
0: क्योंकि घर में जब बच्चा देखता है तो सबसे पहले पिताजी नजर आते
1: जी,
0: हैं
1: जी।
0: तो जो कार्टून मैंने आपको अभी सुनाया था करवा चौथ वाला, उसमें हालांकि पिताजी के सिर पे बाल हैं तो उन्हें मैंने बनाया था वहां पर, और उन्हें पिताजी को लेकर कार्टून बनाने के अलावा उनसे बहुत सी चीजें मैंने सीखी। एक तो जो हास्य रस, उनमें काफी हर चीज में हंसते हैं, सामाजिक बहुत हैं, रिश्ते निभाते हैं। एक तो पिताजी से प्रेरित हुए, फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो वही आर के लक्ष्मण जी जो सबके प्रेरणा स्रोत चाहते होते हैं, लक्ष्मण जी हुए, सुधीर दर और मारियो मिरांडा साहब ये, और बाहर के कार्टूनिस्टों में उडेर जो और डेविड लो और अपने वॉल्ट डिज्नी वो तो है ही, ये सब चलते हैं। तो इन लोगों से कुछ ना कुछ देखकर और लगा, इनकी विशेषताओं को देख के लगा कि वो उनमें से कुछ हम सीखें।
1: तो क्या लगता है आपको कि जो ये हमारे विदेशी कार्टूनिस्ट हैं उनमें और हमारे देश के कार्टूनिस्ट की विधा में, सोच में, विचार में कोई अंतर महसूस किया आपने?
0: हाँ, अंतर तो होता है क्योंकि विदेशी लोग जो है उनके कार्टून्स भी विषय उनके उस तरह के होते हैं और वहां के लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं क्योंकि वो हास्य प्रिय होते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर उनमें काफी डेवलप्ड होता है उसकी तुलना में। अच्छा, हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है, इतना हम लोग देखते हैं लोक जीवन में और सभी दूर,
1: वहाँ विविधता
0: हाँ,
1: नहीं है
0: उतनी नहीं,
1: लेकिन
0: है।
1: लोगों में जागरूकता बहुत,
0: जागरूकता बहुत है,
1: आम आदमी से जुड़े हैं वो।
0: हाँ, हाँ,
1: हमारे दैनिक जीवन में ये कार्टून नहीं होते हैं,
0: नहीं होते हैं। तो जैसे हम बता देंगे हमारी फिल्मों में और वहाँ की फिल्मों में जो फर्क होता है, हमारी फिल्मों में गाने भी डाले जाते हैं, ये सब चीजें। तो उसी तरह से कार्टून के लिए मैंने जो अपनी एक शैली विकसित की तो उसमें सभी की थोड़ी कविता भी होती है, थोड़ा नाट्य भी होता है और भाषा का भी आनंद और बाकी स्केच तो है ही, ताकि एक अच्छा भरा पूरा उसमें एक मटेरियल सबको मिले।
1: तो देवेंद्र जी, चलते चलाते हम बस आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि भविष्य में आप अपने कार्टून के माध्यम से क्या नया संदेश देना चाहते हैं? कुछ ऐसे कार्टून्स जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं जिस पर आप काम कर रहे हो?
0: हाँ, नया विचार यही है कि जो आजकल रिश्ते जो टूट रहे हैं और यानी हम देख रहे हैं कि पहले तो केवल शादियों का मौसम आता था, है ना, उसका भी सीजन होता था कि हाँ भाई अब देव जाग गए या सो गए,
1: बिल्कुल।
0: और अब देख रहे हैं कि हम तलाकों का मौसम चल रहा है और वो बारहमासी है। तो उन चीजों को लेकर कि रिश्ते ना टूटे, इंसान समझदारी से इन्हें सहेजे, और जो हम देख रहे हैं कि माता पिता अकेले होते जा रहे हैं, ये सब चीजें एक बड़ी एक सामाजिक समस्याओं के तौर पर छूती हैं मन को। तो इन्हें लेकर काम करने की मेरी इच्छा है कि कार्टूनों के माध्यम से एक सीरीज में ऐसी तैयार करूं और वो प्रदर्शित हो और शायद इससे कुछ असर हो, मेरा भी एक आहुति मेरी भी रहे इसमें
1: जी,
0: सुधार में
1: जी। बहुत ये बात, बहुत ही शानदार और एक समसामयिक विचार और गहरे विचार हमारी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कि माता पिता हमारे लिए क्या मायने रखते हैं।
0: हाँ।
1: और हम जो है बड़ी फैमिली में रहने वाले लोग आज कैसे अलग अलग हो गए हैं और जिंदगी में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो रिश्तों की बात आपने कही कि रिश्तों को बनाए रखना, सहेजना बहुत जरूरी है, इस पर आप काम करना चाहते हैं, स्वागत है। और आपको हम भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम,
1: शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान। आज इस कार्यक्रम में आपने सुनी कार्टूनिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम संपन्न होता है, नमस्कार। आज के

अरे हिल्ला बाबा, सब्र का फल मीठा होता है। देखो ना, डेरी रे हूँ ना कहेंगे आमे दुहे मिसी गले, दुई अजना व्यक्ति रु आज दुहे दुहिंकर जीवन पलटी जाइछ।

0: बेल तो सारी गला बजे
1: सारी
0: निमन
1: गला में
0: आरी आई बाट के तुमके शरद लगला पर गीत मुन सुनाई देव तुमके मन के गला पर गीत सुनाई देव एंतिया का फोन मुन करते रुआ हमर फोन नंबर के नो फसरा गालुनी जोर जोर

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
2: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनर कुमार देसानायक से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों की कल्याण और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। उन्होंने क्षेत्र की सुरक्षा, शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के उपायों पर भी चर्चा की। राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। वित्तीय आसूचना इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 15 वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं। इनमें बिट यूनिक्स, डिजी फिनेक्स, पायोनेक्स, व्हाइट बिट, फिक्स फ्लोट और टू बिट शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन संस्थाओं को देश में अवैध रूप से संचालित एप्लीकेशन और यूआरएल हटाने का भी निर्देश दिया गया है। कीनिया के शिक्षा और तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज पंजाब और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ के मानवाधिकार आयोग का दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य मानवाधिकारों को शिक्षा, युवा कौशल

0: प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण से जोड़ने के भारत के अनुभवों को साझा करना था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राजस्व आसूचना निदेशालय ने पिछले दो सप्ताह के दौरान देश भर में चलाए गए अभियानों में लगभग 740 किलोग्राम गांजा और चरस जब्त किया है। एजेंसी ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से एक महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में आज पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक जीते। अहमदाबाद में शीतल देवी ने कंपाउंड महिला व्यक्तिगत स्पर्धा तथा हरविंदर और भावना ने पैरा रिकर्व मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भावना ने महिला रिकर्व, सरिता ने पैरा कंपाउंड व्यक्तिगत और स्वाति चौधरी ने W1 व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता। पुरुष वर्ग में तोमन ने कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी रे संवाद सुनिले रिले करी प्रचार कलो आकाशवाणी दिल्ली रो आकाशवाणी जयपुर सुनंतु आज सांध्य अधिवेशन रे प्रचार हेबागु थिबा कार्यक्रम संपर्क रे किछि सूचना संध्या 6:30 रे उज्ज्वल आम देश संध्या 6:55 रे आजिरो प्रसंग एवं राति 7:25 रे सुनिबे नवरंगपुर जिल्ला संपर्क रे रिले करी प्रचार करिवो आकाशवाणी कटक केन्द्र। ओडिया चलचित्रर गीत शुणे राति 7:00 राति 7:30 प्रचार करू कृषि और कृषक कार्यक्रम हालचाल रही स्वास्थ्य और परिवेश सुरक्षा चाषी भाई द्विपद कथार शुणे ओ सत्यव्रत सामंतराई सह साक्षात्कार पर आज चाषी क्रम शुणे गोपीनाथ साक्षात्कार राति 8:00 प्रचार करू चिरसबुज कार्यक्रम राति 8:15 शुणे ए मासर विशेष सुगम संगीतर कार्यक्रम मूर्छना शिल्पीमाने सनातन पुरोहित दास एवं जयश्री त्रिपाठी राति 8:30 प्रचार करिवो शास्त्रीय संगीतर कार्यक्रम एथिरे शुणे सितार वादन शिल्पी पंडित निखिल बेनर्जी ए मासर हिंदी साहित्य पत्रिकार कार्यक्रम भारती शुणे राति 9:30 राति 10:00 प्रचार करिवो आंचलिक गीतर कार्यक्रम एथिरे शुणे संबलपुर अंचल गीत झुमर गीत एवं कलाहांडी अंचल गीत एकक कलाकार क्रम शुणे निर्देशक राजेश रोशन निर्देशन हिंदी चलचित्रर गीत एथर आसंत शुणा आसंता कालीर किछि भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना शुणे 6:05 शिल्पीमाने वैभवी सेटे ज्ञानेन्दु पात्र साधना दास उपेन्द्र कुमार मिश्र गीताराणी दास एवं बाणीकंठ निमाई चरण हरिचंदन रामचरित मानस शुणे 6:25 6:45 रही आदिवासी संगीतर कार्यक्रम रिंजोड़ी एथिरे कया संप्रदायर गीत परिवेशन करिछंती भीम मड़कामी एवं साथी 7:25 बर्णाली शुणे गवाक्ष कार्यक्रम एथिरे शुणे करुणार शेष भाग दिन 11:00 प्रचार करिवु लोकगीत क्रमरे दासकाठिया चित्रसेन शरण परिवेशन करिछंती सनातन रणा एवं साथी मासिक विज्ञान पत्रिकार कार्यक्रम विज्ञानिका भेटीदेव दिन 11:30 एथिरे प्रथमे रहिछि संपादकीय 3D छता परे रहिछि अजन स्तर क्षयरकु नेइ प्रणति आचार्य मिश्रंक आलोचना एवं शेषरे शुणिबे स्तन कर्कट संपर्करे डॉक्टर प्रभात कुमार परिडांक सह साक्षात्कार अपराह 5:00 शुणे जुबा।

0: मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्प संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर दे श्री वैष्णव कहते आसंता वर्ष यह बुलेट ट्रेन सेवा आरंभ करा संपृक्त करिडर कार्य द्रुतगति से आगे चली प्राथमिक भाव सुरत भापी पर्यंत 100 किलोमीटर सेक्शन को एथिलागि उन्मुक्त रेलमंत्री श्री वैष्णव सूचना देते भारत श्रीलंका सभ्यतागत उत्तम पड़ोसी और सामुद्रिक भागीदारी होता दृष्टि देशवासी विकास और कल्याण दिगरे मिलित प्रचेषा करने को निजर प्रतिश्रतिबद्धता जाहिर कर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीन दिनिया श्रीलंका गस्त अवसर में आज कलम्बो राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशा नायकों सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे द्विपक्षीय आलोचना करने समय मत प्रकाश पाई उभय देश संपृक्त अंचल शांति और सुरक्षा बजाय रखा सहित समृद्धि दिगरे एकत्र सम्मति प्रकाश कर अवसर में श्री देशा नायक भारत सुरक्षा स्वार्थ को विपद सृष्टि करोसी प्रकार बेआईन कार्य को श्रीलंका भूपृष्ठ में कार्यकारी करने लगी अनुमति दिया सामुद्रिक झड़ दीतवा समय भारत ऑपरेशन सागर बंधुर अंशस्वरूप श्रीलंका को रिलीफ सहायता जगाई राष्ट्रपति देशा नायक कृतज्ञता जन श्रीलंकार एक उत्तम बंधु तथा पड़ोसी होता दृष्टि समस्त प्रकार सहायता जगाई देवाक भारत निजर दायित्व मन करे बोली प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह कहते हैं अवसर में दुई देश मध्य केतक बुझामणा पत्र स्वाक्षरित विशेषकर श्रीलंका वायुसेना लगी L-70 बंधुक आधुनिकीकरण और दुई देश जातीय समर शिक्षार्थी बाहिनी और जातीय प्रतिरक्षा महाविद्यालय मध्य सहयोग को अधिक सशक्त करने लगी यह बुझामणा पत्र स्वाक्षरित अवसर में उभय नेता भर्चुआल माध्यमरे भारतीय प्रतिरक्षा बाहिनी द्वारा निर्मित तीनोटी वेले ब्रिज उद्घाटन करिसंती आलोचना समय प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह श्रीलंका राष्ट्रपति श्री देशा नायक को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुभेच्छा ज्ञापन करिसंती श्रम और नियोजन मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार मिलित सहयोग में आसंता 11 तारीख दिन मुंबई ठारे अट्टालिका और अन्यान्य निर्माण श्रमिक मान एक जातीय सम्मेलन आरंभ हो दुईदिनिया सम्मेलन में केन्द्र श्रम और नियोजन मंत्री डॉ मनसुख मांडव्य अध्यक्षता करेंगे संपृक्त श्रमिक मान ढांचागत कार्यशैली और कल्याण बोर्ड को अधिक सशक्त करने दिगरे सम्मेलन एक गुरुत्वपूर्ण मंच भाव सब्यस्त हो श्रम और नियोजन मंत्रालय गतवर्ष नुआदिल्ली अनुष्ठित जातीय श्रम सम्मेलन अवसर में शुभारंभ होता तीनोटि प्रमुख पदक्षेपर अग्रगति संपर्क अवसर में समीक्षा कर दुईदिनिया कार्यक्रम में श्रमिक मान दक्षता विकास और निजुक्ति सुजोग सृष्टि आदि प्रसंग उपर आलोचना मंत्रालय चीन्र सांघाईठारे अनुष्ठित होबाक थिबा 48तम विश्व दक्षता प्रतियोगितारे प्रथम थर लागि 11टि नूतन वर्गरे भारत भाग नेबो दक्षता विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय पक्षरु ए सम्पर्कित दिया जायथिबा सूचना अनुजाय आसंता 22रु 27 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होबाक थिबा एहि प्रतियोगितारे मोट 64टि वर्गरु 63टि रे भारत अंशग्रहण करिबो भारतीय दलरे मोट 60 जन प्रतियोगीनकु शामिल करा जायछि गुजरात विधानसभा तीनदिनिया मौसुमी अधिवेशन आज आरंभ हो अधिवेशन में मुख्यतः वस्तु और सेवाकर संशोधन सहजरे व्यवसाय करने प्रक्रिया उच्च माध्यमिक शिक्षा जमी टिकस पशु संपद अधिनियम संपर्कित प्रमुख बिल गृह उपस्थापन कार्यसूची रही अहमदाबाद में चली विश्व पारा तीरंदाज प्रतियोगिता आज अंतिम दिवस में भारत दुईट स्वर्ण और चारोट ब्रोंज पदक हासिल कर महिला वर्गर शीतल देवी व्यक्तिगत भाव गोटे स्वर्ण पदक पाईबाबे हरविंदर और भावना जोड़ी मिक्सड वर्गरे अन्य स्वर्ण पदकटे हासिल कर यूएस ओपन टेनिस पुरुष सिंगल्स वर्ग सेमीफाइनल पर्यायर आमेरिकार बेन सेल्टन एवं फ्रांसेस टाइफो प्रवेश कर आज न्यूयॉर्क ठारे अनुष्ठित क्वार्टर फाइनाल पर्यायर सेल्टन पूर्व वर्ष चैंपियन कार्लस अल्कारज को 6-7 6-1 6-3 1-6 7-6 सेट रे परास्त करिसंती सेहि टाइफो ए पर्यायर गतकाली रात अनुष्ठित मैच रे आलेक्स मिकलसेन को परास्त करिसंती आज रात अनुष्ठित होबाकथिबा क्वार्टर फाइनाल रे बेल्जियम रो अलेक्जेंडर ब्लॉक्स और रूस रो कैरेन काचानोव को मध्यरे मुकाबला हेबो सेहि आसंताकाली सकाले अनुष्ठित होबाकथिबा अन्य एक क्वार्टर फाइनाल मैच रे जर्मन रो अलेक्जेंडर वेरेव डच रो बोटिक भांटे को भेटिबे महिला सिंगल्स वर्ग रे पूर्व वर्ष रो चैंपियन आरियन सावलेंका और जेसिका पेगुला सेमीफाइनल में प्रवेश करिसंती।

0: को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की, कहा ऐसे हमले बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में आवाजाही के लिए खतरा। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न, भारत ने 4 स्वर्ण सहित 15 पदक जीते। और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं में 10,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन, ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का निर्णय लिया है।
1: रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का जो काम पिछले 12 वर्षों में चल रहा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंप्लीट ओवरहॉलिंग जो रेलवे की हो रही है, कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगले वर्ष शुरू हो जाएगी।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क बढ़ेगा और छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में संपर्क बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और संचालन की लागत भी कम होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, To imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ा

0: भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार देसानायक से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति देसानायक ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। श्री सिंह ने इस बैठक को सफल और सार्थक बताया।
3: आज मेरी हेज एक्सलेंसी द प्रेसिडेंट के साथ भी बहुत ही फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव मीटिंग भी उनके साथ हुई है और उनका विजन और लीडरशिप हमारे दोनों देशों के बीच मैं समझता हूं कि पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने में वो कंट्रीब्यूट करेगी।
2: श्री राजनाथ ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या से भी मुलाकात कर विकास सहयोग शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारतीय वायुसेना का 8वां विमान 35 टन राहत और बचाव का सामान लेकर नेपाल के काठमांडू के लिए रवाना हो गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस मदद में NDRF का सामान, बचाव कार्य के उपकरण, फोरेंसिक का सामान और सेना की टीम के लिए जरूरी सामान शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अपने राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है। मुंबई में आज ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की अंतिम बैठक हो रही है। इस वर्ष ब्रिक्स वित्तीय चर्चाओं का विषय है मजबूत नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इससे पहले वित्त मंत्री और गवर्नर पिछले महीने जयपुर में बैठक कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक जन भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेते हुए हम भारत को आगे बढ़ाने में, देश को एक साथ लेकर चलने में और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र को इस कार्यक्रमों में हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है।
2: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लंदन में 3 बड़े सम्मान दिए जाएंगे। उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकॉग्निशन और हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टेट्समैनशिप अवार्ड दिया जाएगा। ये सम्मान उनके जन केंद्रित सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए दिए जा रहे हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा है कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन हैं। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका का निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र में कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
7: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।

0: और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इनसे बाब अल मंदीब जलडमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होगी। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में 2 अमरीकी जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया है। ईरान ने यह कार्रवाई अमरीकी सेना द्वारा उसके 5 तेल टैंकरों को नष्ट किए जाने के जवाब में की है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कल से और बढ़ गया है। पर्शियन गल्फ और उसके आसपास सैन्य ठिकानों के साथ साथ व्यापारिक जहाजों पर भी हमले हुए हैं। अमेरिका का कहना है कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद उसने 5 ईरानी तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया। वहीं ईरान का दावा है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास 2 अमेरिकी नौसैनिक जहाजों और 8 तेल टैंकरों पर हमला किया। यूके एमटीओ ने पुष्टि की है कि गई रात कई व्यापारिक जहाजों पर हमला हुआ। इस बढ़ते तनाव का असर तेल की कीमतों पर भी पड़ा है। अगर जहाजों की आवाजाही और तेल के सप्लाई लंबे समय तक प्रभावित रहे तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। मनीष शिवा, आकाशवाणी न्यूज, दुबई।
1: थाईलैंड के गृह मंत्रालय ने कहा है कि साधारण पासपोर्ट धारक भारतीय पर्यटकों को वीजा अनिवार्यता से छूट दे दी गई है। ये छूट पर्यटकों को थाईलैंड में 30 दिन तक रहने की अनुमति देती है। ये छूट इस महीने की 15 तारीख से लागू होगी। गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन और सोन समेत अन्य नदियों के जलस्तर में कमी आने के बावजूद बिहार के लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक रिपोर्ट।
3: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 14 जिले पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया और अरवल जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 793 सामुदायिक रसोई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 15 राहत शिविर भी संचालित किए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सुविधा के लिए 1872 नावों का परिचालन हो रहा है। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ की 10 और एसडीआरएफ की 27 टीमों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जूनियर हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन की मोकी में आज भारतीय पुरुष टीम ने कप्तान अनमोल इक्का के शानदार 6 गोल की मदद से चीनी ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। वहीं भारतीय जूनियर महिला टीम ने अपने आखिरी पूल मैच में चीन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। अब क्वार्टर फाइनल में कल भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज गिरावट आई और वे लगभग 3 महीने पहले के स्तर पर आ गए। सेंसेक्स 813 अंक गिरकर 74,764 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 204 अंक नीचे आकर 23,432 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 1 डॉलर की तुलना में 28 पैसे गिरकर 95.11 रुपए पर बंद हुआ।
1: भारत इस वर्ष 21 से 23 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 7वें एग्री वोल्टेक्स विश्व सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। भारत और श्रीलंका ने L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। श्रीलंका ने भरोसा दिलाया कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत की सुरक्षा हितों के खिलाफ नहीं होने देगा। भारत ने सऊदी अरब में हौसी विद्रोहियों के हमलों की निंदा की। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न। भारत ने 4 स्वर्ण सहित कुल 15 पदक जीते और जूनियर एशिया कप हॉकी में भारतीय पुरुष टीम सेमीफाइनल में और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet approves 8 railway multi-tracking projects worth over 20,000.

0: अगस्त के महीने के साथ साथ सावन भी चला गया, छोड़ गया साल भर के लिए भीगी भीगी यादें, और साथ में दे गया भादों का उमस और झमाझम फुहार विदाई उपहार में। श्रोताओं, सावन गया तो क्या हुआ, भादों का मन नया है। सावन गया तो क्या हुआ, भादों का मन नया है, भीगी हुई इस धरती पर जादू कुछ नया है। तो चलिए चलते हैं इस भीगी भीगी रात में मासिक हिंदी साहित्य पत्रिका भारती के एक और नए अध्याय के साथ, आप और हम। आज के इस अध्याय में आपको हृदय से स्वागत करती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज भारती के आंगन में साहित्य की जादूगरी दिखाएंगे अरुणा महापात्र जी, पर उससे पहले कुछ शब्द संपादकीय की सुनते हैं हमारे केंद्र के एडिशनल डायरेक्टर प्रोग्राम मनीष ठाकुर जी से।
1: आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, पहचान और भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था। आइए हम सब मिलकर अपने दैनिक जीवन और कार्यक्षेत्र में हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करने का संकल्प लें। हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए और जहां तक हो सके इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।
0: ये था संपादकीय, प्रस्तुत किए थे हमारे केंद्र के एडिशनल डायरेक्टर प्रोग्राम मनीष ठाकुर जी। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूं, तुम आंखों से बोलो। जी हाँ, कभी कभी बोलने समझने के लिए सिर्फ होठों की ही जरूरत नहीं होती, कभी कभी आंखें भी बातें किया करते हैं, लेकिन कभी कभी, क्योंकि भावों के आदान प्रदान के लिए ही तो भाषा की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो कथित हो या लिखित। भाषा वो साधन है जिनके माध्यम से हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक मधुर, प्रमुख तथा भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय और बोली और समझी जाने वाली भाषा है हिंदी, जो कि हमारे देश की राजभाषा भी है। संयोग की बात यह है कि इसी माह के आने वाली 14 तारीख को हम सब मनाने जा रहे हैं हिंदी दिवस। तो हमारे श्रोताओं को हिंदी दिवस की बधाई देते हुए हम स्वागत करते हैं हमारे आज की अतिथि को। आज की अतिथि हैं अरुणा महापात्र जी। अरुणा जी, नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: स्वागत है आपको हमारे आकाशवाणी जयपुर के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
0: आप सबसे पहले कुछ अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को, उसके बाद हम बातें करते हैं।
2: अपने श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम अरुणा महापात्र, हिंदी की मैं टीचर हूँ। बचपन से मैंने हिंदी जगह से मैं पली बड़ी हूँ और हिंदी भाषा से मुझे बहुत लगाव है।
0: अच्छा, आगे हम बातें करेंगे राजभाषा हिंदी के बारे में, पर उससे पहले आपसे सुनते हैं एक कविता।
2: जी हाँ, कविता का शीर्षक भागम भाग जिंदगी, सुबह हुई तो भागे भागे, कंधों पर है सपने जागे, घड़ी की सुई दौड़ लगाती, जिंदगी भी दौड़ी जाती, किसी को मंजिल जल्दी पानी, किसी को अपनी राह बनानी, कोई पढ़ता कोई कमाता, कोई अपना भाग्य बनाता, मोबाइल हाथों में रहता, हर पल कोई संदेश है कहता, दुनिया जैसे पास बुलाती, फिर भी दूरी बढ़ती जाती।

0: सुबह से शाम कहाँ हो जाती, खबर किसी को नहीं हो पाती। दिन भर मेहनत काम हजार, रात मिले तो थका शरीर मन बेहाल। हम कहते हैं कल मिल बैठेंगे, कल कुछ पल संग हम रहेंगे। कल की खातिर आज गवाते, आज के पल फिर लौट न पाते। बचपन पीछे छूट गया है, कागज जैसा टूट गया है। खेल के मैदान बुलाते हैं, पर हम समय कहाँ निकाल पाते हैं। जीवन केवल जीत नहीं है, हर पल कोई दौड़ नहीं है। कुछ पल हंसना, कुछ पल गाना, कुछ पल अपनों संग बिताना। सुबह की पहली किरण निहारो, पेड़ों से आती हवा शवारो। पंछी का वह गीत सुनो तुम, सुबह की पहली किरण निहारो।
1: बहुत ही सुंदर। अच्छा अरुणा जी, जैसे हमने कहा था, इसी सितंबर के महीने में हम मनाने जा रहे हैं हिंदी दिवस। आप तो जानते ही हैं, हिंदी एक बहुत ही मधुर भाषा है। इस हिंदी भाषा की लोकप्रियता को बढ़ावा देने के इरादे से ज्यादा इसको समझे, बोले और इस्तेमाल करें, सम्मान भी करें, इसका इज्जत करें, इसी इरादे से हम मनाते हैं हिंदी दिवस। यहाँ पर एक बात दिमाग में आता है, हिंदी को राजभाषा की भी मान्यता मिली हुई है, तो जो राजभाषा है इसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताइए, क्या है राजभाषा, क्या है और कैसे बना है।
0: बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके द्वारा पूछा गया है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझे जाने वाली भाषाओं में से एक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह हमारे देश की संस्कृति, साहित्य और परंपराओं को लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है।
1: अच्छा,
0: ध्यान देने वाली बात है कि संविधान ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया है। हिंदी के साथ अंग्रेजी का भी संघ के सरकारी कामकाज में प्रयोग होता है, इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस की शुरुआत हुई थी।
1: अच्छा, तो तभी से ये प्रथा चली आ रही है।
0: तभी से हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं।
1: जी।
0: इसका उद्देश्य हिंदी के महत्व को समझाना और इसके प्रति लोगों में रुचि बढ़ाना है। हिंदी में अनेक महान कवियों और लेखकों ने भी साहित्य की रचना की है। उसी में हैं मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जैसे साहित्यकारों ने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाया। हिंदी केवल बातचीत का माध्यम ही नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम भी है। हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए और शुद्ध, सरल तथा प्रभावशाली हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए।
1: अच्छा, तो ये तो आपने कुछ बताया हिंदी दिवस के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में। तो हिंदी को जो राजभाषा की मान्यता मिली है,
0: जी हाँ,
1: इसका सफर कब, कैसे शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे?
0: इसके सफर की शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। गांधी जी हिंदी को भारत की एकता और जन संपर्क की महत्वपूर्ण भाषा मानते थे। उनका विचार था कि देश के अलग अलग लोगों के बीच संवाद के लिए ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग आसानी से इसे समझ सके। गांधी जी हिंदी के प्रचार प्रसार के समर्थक थे। वे चाहते थे कि हिंदी सरल, सहज और आम जनता के करीब हो। उनका मानना था कि अपनी भाषा में शिक्षा और विचारों की अभिव्यक्ति से लोगों में आत्मविश्वास बढ़ता है। 1918 हिंदी साहित्य के सम्मेलन के 8वें इंदौर अधिवेशन अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा की स्पष्ट व्याख्या की और हिंदी भाषी राज्यों में उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता का जोरदार शब्दों में समर्थन किया। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक राष्ट्र बनाना है तो चाहे कोई माने या न माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी दूसरे

0: भाषा को कभी नहीं मिल सकता
1: जी।
0: और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने ये कहा था, प्रत्येक प्रांत में उस प्रांत की भाषा सारे देश के पारस्परिक व्यवहार के लिए हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए अंग्रेजी का व्यवहार हो।
1: अच्छा अरुणा जी, जैसे हमारे भारत में बहुत सी बोलियां हैं, बहुत सी भाषा बोली जाती है, बहुत भाषा भाषी हम रहते हैं यहाँ पर, तो हिंदी को जो राजभाषा की मान्यता मिली है इसमें भी तो बहुत संघर्ष हुआ होगा।
0: जी हाँ।
1: तो इसके बारे में कुछ और बताइए।

0: देश की कोई एक राष्ट्रभाषा तय करना आसान नहीं था
1: जी।
0: उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषाई भेद के चलते अंग्रेजी को छोड़ना मुश्किल लग रहा था। मुंशी अयंगर फॉर्मूला विवाद को सुलझाने के लिए देवनागरी लिपि वाली हिंदी को संघ की राजभाषा बनाया गया और अंग्रेजी को 15 साल तक सहायक भाषा के रूप में रखने का फैसला हुआ।
1: अच्छा,
0: दक्षिण भारत का विरोध।
1: अच्छा, दक्षिण भारत के भाषा भाषी लोग, उन्होंने विरोध किया था।
0: हाँ, उन्होंने उनका विरोध किया।
1: अच्छा,
0: 1965 में जब 15 साल पूरे हुए और हिंदी को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई, तब तक गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु,
1: मतलब जो दक्षिण भारत
0: में हिंदी आंदोलन शुरू हो गई,
1: एंटी हिंदी आंदोलन। अच्छा,
0: एंटी हिंदी आंदोलन शुरू हो गई।
1: ये तो था संघर्ष की बात, तो आगे ये सफर कैसे तय हुआ?
0: आगे के सफर की शुरुआत आजादी के आंदोलन महात्मा गांधी ने देश के पत्रकारों, संपादकों और प्रकाशकों को हिंदी भाषा को अपनाने तथा इसका प्रचार प्रसार के लिए जोड़ा और उन पर गहरा प्रभाव छोड़ा था।
1: अच्छा,
0: गांधी जी ने स्वराज, स्वदेशी, स्वावलंबन, नैतिकता, अस्पृश्यता, राष्ट्रीयता, ग्राम स्वराज, महिला जागरण जैसे स्वाधीनता की बुनियाद में चलाए जा रहे आंदोलन में भाषा और लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्र लिपि के रूप में हिंदी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी लिपि के हेतु संकल्पित होकर कार्य किया था। गांधी जी ने टैगोर और तिलक को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित किया। हिंदी भाषा के गांधी जी अपने भाषणों में अनेक बार लेखों में बोलते रहे और लिखते रहे तथा अपने हिंदी के लिए भाषा नीतियां बनाते रहे। हिंदी भाषा को अस्त्र बनाकर राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आजादी का विशाल आंदोलन खड़ा किया। राष्ट्र यज्ञ में तन मन से जुड़ गए थे वे। उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर लाखों बार लाखों लोगों को समझाने व सिखाने का भरसक प्रयास किया। हिंदी को लेकर महात्मा गांधी का दृढ़ संकल्प उनकी पुस्तक मेरे सपनों का भारत में भी व्यक्त हुआ।
1: अच्छा,
0: इसी प्रकार गांधी जी को हिंदी के प्रति कितना प्यार था, यह बात से ज्ञात होती है कि उन्होंने कहा था, ईश्वर को दूसरी ही बात करनी थी, उसे मेरे मार्फत हिंदी प्रचार की कुछ और सेवा लेनी थी। गांधी जी ने कहा था, हिंदी मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा है, अंग्रेजी की शिक्षा देना गुलामी में डालने जैसा है।
1: जी,
0: गांधी जी ने कहा था, मैं गुजरात से आता हूँ, मेरी हिंदी में टूटी फूटी है, मैं आप सभी भाइयों से टूटी फूटी हिंदी में बोलता हूँ, क्योंकि थोड़ी अंग्रेजी बोलने में भी मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुझे इससे पाप लगता है।
1: जी, उनको गुलामी पसंद नहीं थी।
0: नहीं थी। हाँ। गांधी जी कांग्रेस के नेताओं और मित्रों को हिंदी की हिमायत करते हुए कहने से नहीं चुकते थे, जैसे कि लोकमान्य तिलक, यदि हिंदी में बोलते तो बड़ा लाभ होता। लॉर्ड डफरिन तथा लेडी चेम्सफोर्ड की भांति लोकमान्य तिलक को भी हिंदी सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा था, अंग्रेजों से भी अंग्रेजी में नहीं बोले, आजादी को लेकर देशवासियों से कहते थे, हिंदी के बिना हमारा स्वराज निरर्थक है।
1: अनुगा जी,
0: जी
1: आपने तो ये बताया राजभाषा के बारे में, पर राजभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों में अंतर क्या है?
0: राजभाषा वह भाषा है जिसका उपयोग किसी देश या राज्य के सरकारी, प्रशासनिक और कानूनी कामकाज के लिए किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोलचाल, सांस्कृतिक पहचान और आपसी संपर्क के लिए उपयोग की जाती है।
1: जी, आपने आज हिंदी भाषा के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया हमें, जैसे कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा, हिंदी दिवस के बारे में भी बताया, तो क्या आप और भी कुछ लिखते हैं?
0: हाँ, एक छोटी सी कहानी है।
1: अच्छा, सुनाइए।
0: जी हाँ, मेरे कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। एक किसान और उसके चार बेटे। एक गांव में रामदास नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके चार बेटे थे, मोहन, सोहन, रोहन और गोपाल। रामदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसके चारों बेटे आलसी थे। वे दिन भर आराम करते और छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते। रामदास अक्सर उन्हें समझाता, बेटो

0: जीवन में मेहनत और एकता बहुत जरूरी है। अगर तुम चारों मिलकर काम करोगे तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन बेटे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। समय बीतता गया और रामदास बूढ़ा हो गया। एक दिन उसे लगा कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। रामदास ने कहा, बेटो, मैंने जीवन भर मेहनत करके खेत और घर बनाए हैं। मुझे चिंता है कि मेरे बाद तुम लोग आपस में लड़कर सब कुछ बर्बाद कर दोगे। चारों बेटे चुप रहे। रामदास ने कुछ देर सोचा और कहा, हमारे खेत में एक बहुत कीमती खजाना दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद खेत को अच्छी तरह खोदना, तुम्हें वो खजाना जरूर मिलेगा। कुछ दिनों बाद रामदास का निधन हो गया। चारों बेटों ने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। वे खेत में पहुंचे और चारों ने मिलकर खेत खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने सुबह से शाम तक मिट्टी खोदी, लेकिन उन्हें कहीं भी सोना या चांदी नहीं मिला। मोहन गुस्से में बोला, पिताजी ने हमसे झूठ क्यों कहा? सोहन ने कहा, इतना बड़ा खेत खोद दिया फिर भी कुछ नहीं मिला। तभी रोहन ने कहा, जब खेत खोद ही दिया है तो इसमें बीज बो देते हैं। सबने उसकी बात मान ली। उन्होंने खेत में बीज बो दिए और रोज मिलकर उसकी देखभाल करने लगे। कुछ महीनों बाद खेत हरी भरी फसल से भर गया। उस साल इतनी अच्छी फसल हुई कि चारों भाइयों ने पहले से कहीं ज्यादा अनाज बेचा और खूब पैसा कमाया। तभी उन्हें पिता की बात समझ आई। गोपाल ने कहा, पिताजी ने हमारे लिए सोना नहीं छिपाया था। उन्होंने हमें मेहनत का महत्व समझाने के लिए खजाने की बात कही थी। मोहन बोला, अगर हम खेत खोदने के बाद उसे छोड़ देते तो हमें कुछ नहीं मिलता। मेहनत के साथ सही काम करना भी जरूरी है। चारों भाइयों ने उस दिन से आपस में झगड़ना छोड़ दिया। वे मिलजुल कर खेती करने लगे। कुछ ही वर्षों बाद में उनका खेत पूरे गांव में सबसे अच्छा खेत बन गया। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि मेहनत, एकता और सही सोच है। जो लोग मिलकर मेहनत करते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर सकते हैं।
1: बहुत सुंदर कहानी सुनाया आपने अरुणा जी। तो जाते जाते एक और कविता सुनाइए ना।
0: मेरी कविता का शीर्षक जीवनदायिनी नदियाँ। पर्वत की ऊंची चोटी से निकले नदियाँ छोटी छोटी, पर्वत की ऊंची चोटी से निकले नदियाँ छोटी छोटी, कलकल करती छलछल करती लेकर चलती अमृत धारा। जीवन की ये प्यारी धारा धरती माँ का सुंदर हार, खेतों को हरियाली देती बनकी सबका जीवन आधार। गंगा यमुना नर्मदा प्यारी गोदावरी लगे मनोहारी, कावेरी की निर्मल धारा सबका जीवन इनसे न्यारा। नदी जहाँ से होकर जाती हरियाली की चादर बिछाती, सूखी धरती हंसने लगती फसलें लहर लहर लहराती। चांद उतरता जल की धारा लगता नभ का रूप है प्यारा, तारे जब झिलमिल करते नदियाँ उनको गोद में भरते। कितने पर्व और मेले लगते दीप जलाकर लोग हैं सजते, नदियों से इतिहास जुड़ा है इनसे भारत का मन जुड़ा है। आओ मिलकर शपथ उठाएं नदियों को हम स्वच्छ बनाएं, जल को कभी व्यर्थ नहीं बहाएं, जल संरक्षण का पाठ पढ़ाएं। नदियों का सम्मान करेंगे इनकी रक्षा काम करेंगे, आने वाली पीढ़ी निर्मल जल और हरियाली पाएं। पर्वत की ऊंची चोटी से निकले नदियाँ छोटी छोटी।
1: बहुत ही सुंदर अरुणा जी, मुझे दिख ही रहा है कि आपने बहुत सारी कविताएं भी लेकर आई हुई हैं।
0: हाँ
1: हाँ,
0: कविता का शीर्षक है प्रकृति हमारी प्यारी धरोहर। हरी भरी धरती मुस्काती फूलों की खुशबू बिखराती, हरी भरी धरती मुस्काती फूलों की खुशबू बिखराती, चिड़िया की टोली

0: गीत सुनाती, मन में नई उमंग जगाती। नीला नीला गगन सुहाना, लगता जैसे कोई तराना। चांद सितारे रात सजाएं, टिमटिम करके हमें बुलाएं। हरी हरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती। सूरज अपनी किरणें लाता, अंधियारा सब दूर भगाता। सोने जैसा रूप निखारे, रोशन कर दे जग के द्वारे। हरी हरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती। कलकल करती नदियां बहती, मीठी मीठी बातें कहती। कलकल करती नदियां बहती, मीठी मीठी बातें कहती। झरने गिरते झरझर झरझर, मन हो जाता पल में सुंदर। हरी हरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती। रिमझिम रिमझिम वर्षा आती, रिमझिम रिमझिम वर्षा आती। सूखी धरती हंसती गाती, खेतों में हरियाली छाती, किसानों के मन को हर्षाती। फूलों पर तितरी मंडराती, भंवरा मधुर गीत सुनाती। कोयल मीठी तान सुनाए, मोर पंख फैलाकर नाच दिखाए। हरी हरी धरती, हरी भरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती। धरती माँ का रूप निराला, इसने सबको प्यार से पाला। नदियाँ पर्वत पेड़ और पानी, सबकी अपनी है कहानी। हरी भरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती। लेकिन मानो भूल न जाएं, प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएं। पेड़ काटकर क्या पाएगा, बंजर जग में कौन मुस्काएगा। पेड़ काटकर क्या पाएगा, बंजर जग में कौन मुस्काएगा। आज अगर हम जाग जाएं, धरती को फिर हरा बनाएं। आने वाली पीढ़ी पाएं, सुंदर दुनिया खुशियां लाएं। प्रकृति हमारी सच्ची शान, प्रकृति हमारी सच्ची शान। प्रकृति से ही अपना प्राण, इसकी रक्षा धर्म हमारा। प्रकृति से ही जीवन प्यारा। हरी भरी धरती मुस्काती, फूलों की खुशबू बिखराती।
1: आपकी कविता बहुत ही अच्छा लगा।
2: जी हाँ
1: अरुणा जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हिंदी भाषा के बारे में, राजभाषा के बारे में, कहानी सुनाई, कविता सुनाया, आपको तहे दिल से बहुत बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आप लोगों ने भी मुझे ऐसा सुअवसर दिया। यहाँ आके मैं अपने मन के जो विचार हैं, यहाँ पे मुझे कहने का वो अवसर मिला, इसके लिए मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
1: धन्यवाद। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें और मैथिली शरण गुप्त जी का नाम न लें तो सही नहीं होगा। तो चलिए आज के अध्याय में उन्हीं के जीवन के कुछ पन्नों पर आलोकपात करते हैं, सुनते हैं कुछ आपके बारे में। सखे मेरे बंधन मत खोल, आप बंधा हूं आप खुलो में, तू ना बीच में बोल। जो झूंगा जीवन अनंत है, जो झूंगा जीवन अनंत है, साक्षी बनकर देख और खींचता जा तू मेरे जन्म कर्म की रेख। सिद्धि का है साधन ही मोल, सखे मेरे बंधन मत खोल, सखे मेरे बंधन मत खोल। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1866 में हुआ था। उनके पिता भी एक महान कवि थे, जिनसे प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त को बचपन से ही लेखन में रुचि हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी ने घर पर ही पढ़ाई की, इसके साथ साथ उन्होंने अपना लेखन भी जारी रखा। उन्होंने हिंदी के अलावा बांग्ला मराठी भाषाओं का भी अध्ययन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, महावीर प्रसाद उनके प्रेरणा स्रोत बन गए, जिसकी झलक आप उनके लेखन में भी देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन काल में अपनी रचनाओं के माध्यम से अनेक लोगों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया और गहरा प्रभाव डाला। भारत भारती उनकी सर्वश्रेष्ठ देशभक्ति रचनाओं में से एक है, जो गुप्त जी के देश प्रेम को दर्शाती है। मैथिली शरण गुप्त की कविताएं हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैथिली शरण जी

अपनी रचनाएं लिखकर अपने पिता को दिखाते थे, तब पिता उनकी कविताएं पढ़ते थे और उन्हें आशीर्वाद देते थे कि बेटा तुम भविष्य में और भी अच्छी रचनाएं लिखोगी। अपनी काव्य प्रतिभा के कारण ही आगे चलकर मैथिलीशरण गुप्त का नाम साहित्य जगत में विख्यात हुआ। उनकी कृति भारत भारती स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली सिद्ध हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। 12 दिसंबर 1964 को हृदय गति रुकने से मैथिलीशरण गुप्त जी का मृत्यु हो गई। इसी तरह 78 साल की उम्र में हिंदी साहित्य का चमकता सितारा हमेशा के लिए आस्था की चादर में छिप गया।

श्रोताओं, हर आरंभ का अंत होता जरूर है। जो आता है उसे जाना भी होता है। हम भी आए थे सावन की तरह, अब जाना भी तो होगा ही ना। पर जाने से पहले ये वादा रहा, फिर मिलेंगे अगले महीने मासिक हिंदी साहित्य पत्रिका भारती के आंगन में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अमीना हुसैन को। शुभ रात्रि, नमस्कार।

जीरोन बेमार कुरकुराला पेटो चुटला बाटो घाटो चुटला बाटो घाटो चुटला बाटो घाटो मामूर भंजा हेला आती मुलकुटी मामूर भंजा हेला आती मुलकुटी मामू भचना चोरपटी मामू भचना चोरपटी मामूजी संगे के है बाकोटी मामूजी संगे के है बाकोटी मामू घर चना चोरपटी मामू

खाए के छने के दर्पण देखी काय खुसाती मारू किरपीनी सतरे गुरी खुसाती मारू किरपीनी राय सुल घड़ी आखी झुमरा नाई राय सुल घड़ी आखी झुमरा नाई राय सुल घड़ी आखी झुमरा नाई उर्गुनी मोरू छे खाली छोएली लो मनु नाई जीव बोली ए छोएली मनु

0: ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର, ସମୟ ରାତି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଇଂରେଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରିବ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 भीड़ भाड़ वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के आज के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को बढ़ावा देंगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनवर कुमार दिसानायके से मुलाकात कर भारत श्रीलंका के बीच बहुआयामी साझेदारी पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने श्रीलंकाई वायुसेना के लिए L-70 तोपों में सुधार और दोनों देशों के राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालयों के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया। भारतीय रक्षा बलों द्वारा निर्मित 3 बेली पुलों का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रपति दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका कभी भी अपनी धरती का इस्तेमाल भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए नहीं होने देगा। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिणी अमरासुरिया से भी मुलाकात कर विकास सहयोग, शिक्षा तथा भारत श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत ने सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के कथित हमलों की निंदा की है। भारत ने आम नागरिकों और आर्थिक ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले अस्वीकार्य हैं और इससे बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में आवाजाही प्रभावित होती है। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। आज चलाए गए अभियान के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोन में 34 जगहों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। इसके अलावा 17 प्रॉपर्टीज को सील किया गया, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। राजधानी में पीजी इमारतों के एक बड़े सर्वे के तहत लगभग 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान की गई है जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और जिनमें लगभग 24,000 लोग रह रहे हैं। यह सर्वे पूरी दिल्ली में जारी है, इसे कल तक पूरा करने के निर्देश हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज कहा कि जिला प्रशासन ही विकास, सुधार और परिवर्तन के असली इंजन है। श्री चौधरी ने यह बात महिलाओं के लिए सतत आजीविका निर्माण विषय पर आधारित कौशल मंथन के उद्घाटन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिला आधारित योजना पद्धति के माध्यम से मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि कौशल विकास पहल स्थानीय जरूरतों से प्रेरित हो और उद्योग, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण संपन्न हो गया। भारत ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।